सुप्रभात, हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 17 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 14.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। 6 बजने को है, अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चिंतन।
2: प्रकृति का कुछ ऐसा विधान है कि उत्थान के साथ पतन स्वाभाविक है। जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए परिश्रम, लगन, संयम, उत्साह और निष्ठा की आवश्यकता होती है, जबकि पतन भी स्वयं अपने साधन खोज लेता है, जैसे कुसंगति और गलत साहित्य। अतः हमें गलत संगति और गलत साहित्य से बचना चाहिए। मन गतिशील है और चंचल भी। मन की गति को सबसे तेज चलने वाला कहा गया है और मन वो पानी को एक तरह से देखा गया है। इसलिए हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि पतन की स्थिति को हावी नहीं होने देंगे। ये तभी संभव हो सकता है जब आपके संकल्प में शक्ति हो। ये शक्ति लगातार संकल्प से आती है। वर्तमान में जिधर देखें, लोग बुराई को ही भलाई कहते हैं और गलत कार्यों की तरफ उनका मनन और चिंतन चल रहा है। इस कारण व्यक्ति के चरित्र में गिरावट आ रही है। अगर इस वातावरण से ऊपर उठना है तो हम सबको संयम के साथ संकल्प लेना होगा। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक, आर्थिक हो या राजनीतिक, विकास हेतु संकल्प की आवश्यकता होती है। छोटे से छोटे सफलता बिना परिश्रम संभव नहीं। पत्थर को ऊपर फेंकने में हमें मेहनत करनी होती है, जबकि नीचे फेंकने में कोई खास श्रम नहीं लगता। व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति से जो इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लेता है, जिसका आधार परिश्रम है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक भारतीय इतिहास साक्षी है कि जितने भी सफल आविष्कारक, योग्य चिंतक, श्रेष्ठ विचारक हुए हैं, सभी के पीछे संकल्प और परिश्रम की भूमिका है। हमारे संतों, ऋषि मुनियों ने भी मन को मजबूत बनाने की बात कही है, क्योंकि मन बलवान होगा तो विचार उज्जवल होंगे, संकल्प शक्ति बढ़ेगी। शास्त्रों में भी संकल्प शक्ति का प्रभाव बताया गया है। संकल्प शक्ति सर्वोपरि शक्ति है, इसी से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। संकल्प शक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अतः प्रत्येक सफलता की कुंजी है संकल्प शक्ति और परिश्रम। इनके अभाव में संसार की गति रुक जाएगी और व्यक्ति उत्थान के स्थान पर पतन के अथाह सागर में डूब जाएगा। संकल्प शक्ति से मनुष्य के हर उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है और मनुष्य प्रगति के शिखर पर पहुंच सकता है।
0: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। वाचन स्वर मंजुला नेगी का था।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी देहरादून के साथ। 6:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आपका स्वागत अभिनंदन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस मातृवंदना से।

सिद्धि बुद्धि के दाता, सुख समृद्धि के आधार, गणनायक गणराज करें जीवन का उद्धार। कार्यक्रम में सुनिए ये गणेश वंदना, स्वर उदित नारायण का।

ये मधुर आवाज थी सुधा सेन की। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में अगला भक्ति गीत सुनिए हरिओम शरण के स्वर में।

संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तेरे प्रभु आया। यह आवाज थी हरिओम सरन की। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और कार्यक्रम में अगला भक्ति गीत सुनिए केवल कुमार की आवाज में, ये गंगा गीत।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी देहरादून है। 6:40 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का अंक।

आज प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का समापन प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की विनय और रामायण के पारायण की फलस्तुति की गई है। भक्त कवि का कहना है कि इस कलिकाल में श्री राम स्मरण के अतिरिक्त योग, जप, तप, व्रत, पूजा आदि कोई भी दूसरा साधन नहीं है। स्वयं को संबोधित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे मन, पतित पावन श्री राम का भजन कर किसने सदगति नहीं पाई। जो मनुष्य रघुकुल शिरोमणि का चरित गाते और सुनते हैं, उनके समस्त पाप और मन का मैल बिना परिश्रम के धुल जाते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जो रामायण की 5-7 मनोहारी चौपाइयों का अर्थ समझकर हृदय में धारण कर लेते हैं, उनका 5-5 प्रकार की अविद्या का अंधकार अर्थात अज्ञान श्री राम कृपा से मिट जाता है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने परम शांति पाई, उन श्री राम के समान कृपालु अन्य कोई नहीं। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, न ही आपके समान कोई दीन बंधु। ऐसा जानकर हे रघुवंश भूषण, आवागमन के मेरे भयानक दुख का हरण कीजिए। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तिदायक है।

श्री रामचरित मानस गान का आज का अंक आप सुन रहे थे। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

0: हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट रात्रि 9:15 पर। चर्चा का विषय है प्रसारण समय आज रात्रि 9:30। ये कार्यक्रम भी हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा। सरकार के 12 साल ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज रात 8:10 पर। अब से चंद मिनटों के अंतराल पर यानी प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे कुछ देशभक्ति फिल्मी गीत। प्रातः 8:30 पर समय होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का, जिसके ठीक बाद यानी आज सुबह 9:00 आनंद लीजिएगा सदाबहार फिल्मी गीतों का। विजय सिंह सैलानी के स्वर में सुबह 10:35 पर गढ़वाली लोकगीत आप सुनेंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में। व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश सुनिएगा सुबह 11:00 और आपकी फरमाइश आज रात 10:00। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत के विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद आप ले सकते हैं। सुबह 10:11 पर, दोपहर 1:15 पर और शाम 7:40 पर। दोपहर 12:30 पर जनानों का वास्ता कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान का क्षेत्र मान नौनी विषय पर डॉक्टर अनीता रावत से वार्ता प्रस्तुत की जाएगी। शाम 4:02 पर समय शास्त्रीय संगीत का होगा। श्रोता सुनेंगे भगवान दास मिश्र का सारंगी पर बजाया राग पुरिया कल्याण। जिसके ठीक बाद 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम पेश किया जाएगा। हमारे आज के कलाकार होंगे निर्माता और निर्देशक इम्तियाज अली। युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी हमारे युवा साथी सुनेंगे आज शाम 5:10 पर। संध्या के 5:45 पर समय ग्राम जगत का होगा। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गढ़वाली रूपक भारत माँ की आत्मा को स्वर वंदे मातरम। प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता विषय पर डॉक्टर शरद पांडे से विकास चमोली की बातचीत आप सुन सकेंगे कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7:00। ट्रेडिशनल विजडम इन मॉडर्न टाइम्स विषय पर अंग्रेजी वार्ता सुनिएगा श्रीमती आशा रानी कपूर से आज रात 8:00। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। सवेरे के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलनावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विभिन्नानां राष्ट्राणां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृत्वा विस्तृतं कूटनीतिक कार्यं विहितम्। विदेश मन्त्रालयानुसारं प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना तथा तस्य कनाडादेशस्य समकक्षीयेण मार्क कार्नी इत्यनेन च भारत कनाडादेशयोः सम्बन्धेषु सकारात्मकतायाः स्वागतं कृतम्। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यनेन सह मिलित्वा प्रधानमन्त्री श्रीमोदी 35-2000 दूरदृष्ट्यान्तर्गतं भारत यूके सम्बन्धानां प्रगतिं समीक्षितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी G7 शिखर सम्मेलनावधौ UAE अध्यक्षेण शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सहापि मिलितवान्। तथा च पश्चिम एशिया क्षेत्रे चिरस्थायी शान्तिं सुरक्षां स्थिरतां च प्रवर्धयितुं संवादस्य कूटनीतेः अन्ताराष्ट्रिय विधेः सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च सम्मानस्य महत्वम् अधोरेखितम्। केन्या देशस्य राष्ट्रपतिना विलियम रूटो इत्यनेन सहापि श्रीमोदी मेलनं कृतवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं केन्या च वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षासु दीर्घकालं या

कार्यक्रम वर्ष फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने राजधानी रायपुर से नीलू मेघ डॉक्टर वंदना कुमार बिट्टू कुमार, साथ ही ये फरमाइश लिखते हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदेल, संगीता रानी पप्पू मैक, सुनीता आरजू हसमुख लाल बुलबुल और साथ में इनके परिवारजन। बिहारी रिसलर क्लब से आप हैं सुधा शर्मा, काजल मीरा शर्मा और साथ में अनामिका शर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहे डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये राधिका बीबी अनिष्का और साथ में तन्मय। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं काठू गोदाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, सुनीता राज, भानुराज, अमित खन्ना मी और साथ में हैं प्यारा बिल्लू। और ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं सांगली जिले की जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबद कीरत और साथ में हैं रेहान शेख। गांव कुमारहेडा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाहिना सनकसाना, जियाफिया इब्राहिम, सद्दाम। साथ ही मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत नायक और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नई अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश राजा और साथ में मुन्ना नजीम। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं ज़िला मुरादाबाद गांव दूलापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और साथ में ही नरकी।

इस खातून और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें भेजा है आप हैं राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडा ने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोडा ने। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म का नाम तेरे घर के सामने।

कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने। गुमला झारखंड से एसएम जावेश गुप्ता अंजुम और साथ में है नजमुल हुदा। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं गंजी डिडवारा से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिशी, कमन अफरीदी और साथ में इनके बहुत सारे मित्र रेंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश शर्मा और करुणा वर्मा। साथ ये फरमाइश हमें लिख भेजी है संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल्ला जियाउलक, मोहम्मद उमर डावर, साथ में इनके बहुत सारे मित्र। साथ इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं निज़ामाबाद तेलंगाना से एम ए वईद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनीद, मोहम्मद जुबेर और साथ में बहुत सारे इनके मित्र। साथ ही मैसेज हमें लिख भेजा है गांव भोजपुर तगर सहारनपुर से मोहम्मद इंतज़ार, मोहम्मद जावेद राणा, प्रधान राहत अली और साथ में वकील अहमद। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं नई दिल्ली से हैं जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल और मीला दीपक और साथी। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप हैं अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। साथ ही फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है आप हैं जिन्होंने मैसेज लिख

लिखा है, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण तरुण और साथ में ही प्रतीक चौहान। ये फरमाइश होता लिखते हैं, सेक्टर 5 कोड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित चौहान, बेबी करवी। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से ही किशन बंजानी, नीलम स्वाति और साथ में ही कीशु धनोरी, तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद बेबी आलिया और साथ में आयन बाबू, कांड से मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी, रोशन जहां सिद्दीकी और साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। ये फरमाइश होता लिखते हैं, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल आशीष कुमार सागर, अमर सिंह हितेश सागर, राजेश कुमार और साथ में इनके परिवारजन। पुराना तालाब डुमराव से वल्लुबला अंसारी, अस्मा नाज और शबनम बानू, जेलोड बक्सर से राजेश डी अंसारी और साथ में फातमा नाज। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है, पुरानी भिलाई चरौदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीमुद्दीन जी शाह नवाज और साथ में इनका पूरा सिद्दीकी परिवार। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य लाडोगल मल्होत्रा, इनकी पापा जी हैं नानक चंद मल्होत्रा। साथ ही ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज लिख भेजा है रोहतक से पीयूष सिंह का कोयल और डुग्गू और इनके परिवारजन। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी गीति का और साथ में हैं भानु प्रकाश। मेन रोड तलहारा से प्रकाश पोरकार, नर्मदा और कुमारी सुजाता। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिर नूर। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम खामोशी।

कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम गीत आप सभी की पसंद पर। गंगा सिंह रावत रामपुर उड़ हल्द्वानी से मैसेज लिखते हैं, साथ ही मैसेज हमें लिखते हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रत्नमाला और साथ में आराध्या सुरलकर, और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है गाडगी नगर यवतमाल से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और साथ में रक्षिता लोखंडे। ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं शांति निवास रेलवे जिला अमरावती से आप हैं कुमारी कल्पना गुराड़े, वंदना आशीष और साथ में दीपक गुराड़े, और इसी गीत को सुनना चाहा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना, हरमिंदर सिंह चावला, बानी लोकेश, पायल जोशी, बेबी वेदेही जोशी, हंसिका जोशी और साथ में कुमारी अंकिता। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। ये मैसेज हमें लिख भेजा है जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार साथ में इनकी परिवारजन। फरमाइश होता लिखते हैं कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साथ में साईं। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं जिला खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुजायशी, रमेश चंद्र वर्मा साथ में इनके परिवारजन। अकोला से रमेश कामले, दिव्यानी और गणेश कामले साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सभी हमें खायल और साथ में है जैन मुजावर। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है परी महल कासगंज से आबाद खान, नबी लारफा खान इलमा और साथ में अहमद असलम सैफी। ये फरमाइश होता लिखते हैं अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक समय वेदिका साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है रानीगंज बंगाल से रवि और इंद्र। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं दादरी गेट भिवानी से कुणाल मेहरा और इनके परिवारजन। करीमनगर लक्ष्मी से आप हैं लक्ष्मी नारायण, विजय, अभिनय और साथ में हैं साई किरण, और इसी गीत को सुनना चाहा है जलालाबाद शामली यूपी से राशिद मंसूरी, आयान और जीशान मंसूरी। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं केकी की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम बचना ए हसीनों।

0: इसी गीत को सुनना चाहा था बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनुलाल श्रीवास, अनीता पुष्पांजी, योगिता और साथ में इनके परिवारजन ने यह मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा था। आप हैं श्रोता तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा आयुष विवेक बीबीआई श्रीवास, साथ इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और साथ में भूमिका अरोड़ा ने यह मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा था। आप हैं गांव सोरे ललितपुर यूपी से संतोष, नामदेव, अभय, अनिल, अजित, अनिता, ज्योति, रंजना, संजना, रेखा, भारती और साथ में इनके परिवारजन। ये मैसेज श्रोता लिखते हैं तेलंगाना चुटुपास से कस्तूरी रामायडू और इनके परिवारजन। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। आपने मैसेज ये लिख भेजा है श्री गणेश अभिकाट श्री रामपुर से डी अशोक कुंभार, अभिका जीविका सानु कुंभार और अर्चना कुंभार ने, गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुन्नूर, गुरलाला वीरा और साथ में शुभदीप सिंह, और इसी गीत को सुनने के लिए ये मैसेज श्रोताओं ने लिख भेजा है। कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक दले, सभी तने के त्रिवेणी ऋषिकेश, जीविका और सानिका दले ने, साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। आपने मैसेज लिख भेजा है रहाट गांव कुंभ अमरावती से हैं हर्ष रामेकर, दिलीप अक्षय, रुद्रा रुचिका रामेकर, साथ में इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं राही नगरगंज डिडवारा से शमशुल कमर, राही शाहीन, फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान और ताविश खान ने। श्रोता इसी के साथ आज का एक कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजने को अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलु और वीपी शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक जी एनएच राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. The Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." The French city of Evian remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Prime Minister Modi is also scheduled to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. Later, he will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called on Prince Albert II of Monaco. In a social media post, Mr. Goyal said that during their meeting, they discussed expanding the India-Monaco partnership in sectors such as sustainability, the blue economy, innovation and emerging technologies. He also briefed Prince Albert II on India's flagship Bharat Innovates 2026 event, which concluded yesterday in Nice, France, showcasing India's vibrant technology and innovation ecosystem and strengthening global collaboration. The 8th BRICS Anti-Drug Working Group meeting was convened virtually under India's BRICS presidency. The Narcotics Control Bureau, NCB, informed that delegates from India, China, Ethiopia, Indonesia, Russia, South Africa and the UAE took part in the meeting. During the meeting, the delegates exchanged national drug situation reports and deliberated on emerging drug threats, trafficking trends, operational challenges and best practices in drug control. Defence Minister Rajnath Singh has highlighted that India's annual defence production has surged to an all-time high of 1.78 lakh crore rupees in the financial year 2025-26. In a social media post, Mr. Singh said that this milestone represents an impressive 15.6% growth over the previous year's fiscal year's output of 1.54 lakh crore rupees and a staggering 110% increase since financial year 2020-21, when the figure stood at over 84,000 crore rupees. He added that indigenous defence production has increased nearly fourfold from 4,746 crore rupees in financial year 2013-14. Three new ministers were inducted into the Puducherry cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajivelu and VP Shivakulandhu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. Lieutenant Governor K. Kailashnathan administered the oath of office and secrecy. World Day to Combat Desertification and Drought is being observed today globally. The theme for this year is Rangelands, Recognize, Respect, Restore. On this occasion, Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav urged all to remember that land is the foundation of all ecosystems and the source of our nutrition and energy cycles. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% up in the forenoon session today. The Sensex rose 341 points to 77,150, while the Nifty added 89 points to 24,078 when reports last came in. The price for a barrel of Brent crude fell 5.4% to $78.66. With this, the oil prices dipped below $80 per barrel for the first time since March this year. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
2: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, अब आप प्रियंका मलिक से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुक्तेश्वर में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में उत्तराखंड के 13 बीएलओ ने रिकॉर्ड बनाया। 8 दिन में पूरा किया है गणना पत्रों का वितरण और डिजिटाइजेशन कार्य। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार से गोपेश्वर और ऋषिकेश एम्स के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की नई बस सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा ऋषिकेश एम्स की सीधी बस सेवा से मरीजों को राहत मिलेगी, जबकि गोपेश्वर सेवा से आम यात्रियों को सुविधा रहेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर राजपुर रोड में केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धि और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। चमोली जिला प्रशासन ने कहा चारधाम यात्रा सामान्य रूप से संचालित हो रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने पवित्र श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से आपसी सद्भाव, अनुशासन और शांति बनाए रखने की अपील की है। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रीनगर में विशेष सर्विलांस अभियान चलाया गया। यमुना नदी के पुनर्जीवीकरण से जुड़ी वर्षों से लंबित किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बन गई है। स्वीप उत्तरकाशी के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जोशियाड़ा स्थित जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय की ओर से कल उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में बैंक अधिकारी कर्मचारी स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 12:12 हुए हैं, लीजिए सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए भूपेश कैंतुरा की गाई गजलें। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गजल के साथ। जाने क्या बात सोच कर आँखी, जाने क्या बात सोच कर आँखी, हो गई खुद ही तर आँखी। सुनते हैं भूपेश कैंतुरा की आवाज़ में ये गजल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भूपेश कैंतुरा की गाई कसले। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह देहरादून केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब मैंने सुनेंगे कार्यक्रम जनानों का वास्ता।

नमस्कार दीदी भूल्यू अपर बोली भाषा कार्यक्रम जनन को वास्तव में मेरी सभी बहनों ते मी ममता बड़ोला अपर सेवा सौंद पैटाणु छो। उम्मीद कर दू कि मेरी सभी श्रोता दगड़ियाणी राजी खुशी भेली और मी भी भगवान बद्री विशाल से अपर दीदी भूली काकी बोड़ियों सुख समृद्धि कामना कर दू। बहनों कामकाजक दगड़ दगड़ी आपन अपर स्वास्थ्य को बढ़िया से ध्यान रखण किला कि एक घरक अच्छू से ध्यान जननी रख सके दी चाहे खान पीन से वहा या रौन सौन से वहा या साफ सफे से अपर कुटुंबदारी को अंकुए से देख रेख तभी भे सकती जब हम और आप अपो स्वस्थ होला तो बहनों अपर खान पीण बराबर ध्यान रखण अक्सर दिखे जानू कि महिला सभी तक खले पिले कन आखिर माँ खाना खेन तो कई बार इन हूं कि वही गुण आखिर माँ खाणों की कमी हो जाएंगी या कभी साग भुजी नहीं पुग दी तो वह थक भी जाएंगी या फिर इन बुले जाके अलगस भी कर जाए तो आखिर माँ वह अपर काम उन्हीं चले दें।

या फिर कई बार घरों में इन भी दिखे गया ही कि जन हमर नौ न्याल खाणु छोड़ दिन न तो हम वे तय कह कर अपने काम चले लेना और सोचो छा कि बाद हम दिखे जा तो दगड़ो इन का तय नहीं करण आप कौन भी पूर्व आहार और पौष्टिक भोजन ताजा खाण ही खाण बासी कुसी खाणु कह कर बीमार होने का डर भी ज्यादा हूं। तो अच्छू चुकी किले ने हम पहली बेटे आप साफ सुथरा और ताजो खाना खावा तो आज मैं अपर दगड़ाणु कुणी के कुटीरी बा निकल रही छूँ बता छूँ गीत लोगी तक दगड़ी जरूरी रह बार अपर बहणियों तो सुनो लू और आज आप कुणु ज्ञान प्रद वार्ता भी लही छू वार्तक विषय छू विज्ञान क्षेत्र मान नौनी और वार्ताकार छुनु डॉक्टर अनीता रावत। तो ये वार्ता तय घड़ेक में सुनोला कार्यक्रम की शुरुआत कर दो सबसे पहले एक सुंदर सी गड़बड़।

0: कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: दगड़ियों रेबारो से पहले सुने हम सभी अनीता कंडारी की मीठी सी आवाज में गड़बल गीत। तो उम्मीद कर दूँ कि गीत हमारे सभी बहनों तक खूब भल लगवाल और हाँ किलनी लगवाल। दगड़ियों बहुत बढ़िया गीत भी छे, बोल भी छे और गीतांगा का आवाज़ भी खूब सुरीली छे। अब अपुर दीदी भूलू तय सुनांदा आज एक विशेष वार्ता। वार्ताक विषय छो विज्ञानक क्षेत्र में नौनी और वार्ताकार छन डॉक्टर अनीता रावत। तो सुना यह वार्ता।
5: नमस्कार, आज को युग विज्ञान और तकनीकों को युग च। विज्ञान मानव जीवन का हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाणु च। यह क्षेत्र में आज नौनी भी पिछने नी छी। वो अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन का बल पर विज्ञान का हर क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल करनी छी। नौनियों की बढ़ती भागीदारी न केवल उनको व्यक्तिगत विकास खातिर महत्वपूर्ण च, बल्कि समाज और देश की प्रगति खातिर भी बहुत जरूरी च। पिछला कुछ कालखंड में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र मुख्य रूप से पुरुषों का क्षेत्र मनाया जाता छाई, पर आज हालात बदली गई। नौनी शिक्षा का माध्यम से हर क्षेत्र में अग्ने बढ़नी छी। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विज्ञान जन क्षेत्रों में वो अपनी विशेष पहचान बनानी छी। भारत में कई महिला वैज्ञानिकों ने अपनी उपलब्धियों से देश नाम रोशन करियों च। जन कल्पना चावला, कैसी थॉमस, ऋतु कारीधाल जन अनेक महिला और नौनियों की प्रेरणा का स्रोत बढ़नी चे। आप सभी ने मंगल यान मिशन सुनी होलू। ये मिशन मा 27% महिला की भागीदारी छाई। ये की सफलता ये साबित कर दी कि आज महिला अनुसंधान क्षेत्र तक अग्रणी भूमिका निभानी चे। उनकी सफलता ये संदेश भी दी दी कि दृढ़ निश्चय और मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होंदू। हालांकि आज भी कई क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, सामाजिक बंधन और अवसरों का अभाव जनी बाधा छीन, परंतु परिवार, विद्यालय और समाज का सहयोग से ये सभी बाधाएं हम दूर कर सकदा। नौनियों थे गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा, शोध का अवसर और परिवार को साथ मिलनु बहुत ही जरूरी च। जैसी उनकी भागीदारी, समानता और सशक्तिकरण तय भी बढ़ावा मिल लूँ और वो नई पीढ़ी खातिर एक आदर्श भी प्रस्तुत कर ली और वैज्ञानिक प्रगति और नवाचार थे भी एक नई दिशा दे ली। आप जनदा छी कि विजन 2030 जैकू सतत विकास लक्ष्य धरिया छी, उनको भी मेन उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवा क्षेत्र का क्षेत्र में व्यापक विकास करण च। मी जब यूसर्क में निदेशक पद पर कार्य करनु छाई, वे समय उत्तराखंड सरकार ने 13 जिलों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित की अनेक प्रयोगशालाएं स्थापित करी, जैसी कि छात्रों थे विज्ञान का सिद्धांत समझण, वे का प्रयोग करण और नवाचार का दिशा में काम करने को अवसर मिल सकी, ताकि नौनियों में भी एक वैज्ञानिक सोच विकसित हो और उन्हें भी विज्ञान का क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करना को एक मौका मिल सके। ये का साथ हमल कई क्षेत्रों में विज्ञान चेतना केंद्र भी स्थापित करी, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक जागरूकता एवं अन्य विज्ञान आधारित गतिविधियों से बढ़ावा मिल सके। विज्ञान का क्षेत्र में आज रोजगार की असीम संभावना थी, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, कंप्यूटर वैज्ञानिक या फिर अपनो रोजगार जो कौशल आधारित च, जैसे कि मशरूम उत्पादन, जड़ी बूटी उत्पादन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, फार्मेसी इत्यादि अनेक क्षेत्र छी जो मनोनी अपनी पहचान बना सकती। आज भी आंकड़ा बताना छी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जन क्षेत्र में मात्र 10%, इंजीनियरिंग में 28%, कंप्यूटर विज्ञान विषय में 40% और शोध और विकास में मात्र 18% योगदान नौनियों कुछ। और यदि आप स्टार्टअप की बात करें जा तो भारत में 7,000 स्टार्टअप नौनियों द्वारा शुरू करी गई। भारत सरकार द्वारा भी अनेक कार्यक्रम शुरू करी गई, जन विज्ञान ज्योति जैमा कक्षा 9 से कक्षा 12 की नौनियों थे अग्ने पढ़न खुण सहायता दी जांद, या अन्य कार्यक्रम जन वाइस किरण, गति इत्यादि, या फिर प्रगति छात्रवृत्ति, महिला वैज्ञानिक स्कीम, विदुषी प्रोग्राम जन अनेक कार्यक्रम से ही ज्यों का मकसद ही च कि कन के महिलाओं तक विज्ञान थे पहुंचाए जाए और उन्थे वित्तीय सहायता, मेंटरशिप और गाइडेंस दिया जा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अपना अनेक योजनाओं का माध्यम से जमीनी स्तर पर महिलाओं ते सशक्त बनाना छी। महिला प्रौद्योगिकी पार्क एक योजना च जय का अंतर्गत महिलाओं में क्षमता निर्माण और स्थानीय आवश्यकताओं का अनुरूप तकनीक का माध्यम से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक विकास थे बढ़ावा मिलनु च, जैसे कि कृषि, सुगंधित औषधीय पौधों की खेती, स्वास्थ्य, ऊर्जा संरक्षण, ग्रामीण उद्योग या फिर सूक्ष्म उद्योग आदि पर बहुत काम होनु च। आज सबसे बड़ी जरूरत ची कि शिक्षक और अभिभावकों ते मिली की नौनियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करण खुण प्रयास करण चैनुच, जैन नौनियों की जिज्ञासा, उनका प्रश्न पूछण और नई जानकारी लेना खुण ऊं थे प्रोत्साहित करण चैनुच। विद्यालयों में प्रयोगात्मक और गतिविधि आधारित विज्ञान शिक्षा, जैसी कि विज्ञान मेला, प्रदर्शनी, कार्यशाला, क्विज प्रतियोगिता और नवाचार कार्यक्रम का आयोजन करियो चैन च और नौनियों थे वे मा भाग लेना कुण प्रेरित करण चैनु च। नौनियों थे भारतीय महिला वैज्ञानिकों की उपलब्धियों और उनकी सफलता का बारा मा समय समय पर बतायो चैन च। तकनीकी संसाधन जन कंप्यूटर, इंटरनेट, विज्ञान प्रयोगशाला और डिजिटल शिक्षा तक उनकी पहुंच बढ़ाई चैनी च। और सबसे बड़ी बात च कि शिक्षा मा लैंगिक भेदभाव समाप्त करियो चैन च। यही बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मा भी शामिल च। और इन शिक्षा नीति मा आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार पर विशेष जोर दियूंच। जब नौनियों थे भी समान अवसर, प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलली तो वो तकनीकी, व्यवसायिक, स्वरोजगार, स्टार्टअप जन क्षेत्रों में अग्ने बढ़ली और नेतृत्व कर ली। आज जरूरत इन बात की बीच कि हम सभ्यों थे मिली की प्रयास करनु चैन कि नौनियों में आत्मविश्वास और कौशल विकास करूं चैन, उनकी क्षमता विकसित करे जा, सकारात्मक प्रयास किया जाना बहुत जरूरी छी। एक समाज में अगर हम बदलाव चाहना छौं और एक समग्र

0: विकास की खातिर महिलाओं की भागीदारी बढ़ोन बहुत ही आवश्यक छ। आप सभी जणदा कि समाज में 50% महिलाओं की जनसंख्या छ और ऊँथे अपनी प्रतिभा और क्षमता को पूर्ण उपयोग करने को एक मौका हम सब थे दीन पड़ लो। आज नौनियों को विज्ञान का क्षेत्र में योगदान एक विकसित समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण खातर बहुत ही जरूरी छ। और अंत में मैं यही कहना चाहूँ कि यदि हम सभी मिली की नौनियों थे समान अवसर ऊँथे प्रोत्साहन और सम्मान दियोला तो निश्चित रूप से हम विकास को एक नया शिखर छू सक दें। धन्यवाद।
1: बहनों अभी सुन छे आप वार्ता और वार्ताक विषय छे विज्ञानक क्षेत्र में नौनी और वार्ताकार छे डॉक्टर अनीता रावत। दीदी भूली आप चलदा कुमाऊँ छाड़ और भाषा पंथक स्वर में सुन रही सुंदर सी कुमाऊनी गीत।

बहनों अभी सुने आपन भाषा पंथक आवाज में सुंदर सी कुमाऊनी गीत। हमार सभी बहनों तक गीत खूब भल लगवालू। ये गीत सिर्फ गीत ही नहीं बल्कि युवा हमारी रीति रिवाज संस्कृति झलक दी। ये गीत हमार बोली भाषा में छन जो हमते हमार परंपराओं से जोड़ी रखी थी, जन के हमार सभी दीदी भूली जान दी छन की आज विज्ञान को युग चु तो कई नई नई तकनीकों को आविष्कार होनु चु और अग्नि भी होनु रालू, जो कि समय एक मांग के अनुसार हमते उनको उपयोग तो करनी पड़ दू अच्छी बात च। पर हमते अपनी परंपरा संस्कृति बोली भाषा खान पीन से लेकर हमार जो पुरानी पोशाक च उतः सप्ते प्रयोग में रखन चाहणु, यानी जो पहला हमार पूर्वज पैर लगान छाई तो उतः हम तभी पहन चाहणु। ये हमार पछाण से कि हम कख छा, ये से कम हम हमार अस्तित्व भी बणुराल के हमार जड़ कख बटे जुड़िया छन। तो दगड़ियों कार्यक्रम कंचन उच तो अपुर विचार सुझाव आप हमको चिट्ठी के माध्यम से भेज सकदा। तो हमार चिट्ठी पता च कार्यक्रम जनअनुवास्ता द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून निकट रिस्पना पुल और पिन नंबर च 2480001 ये पर आप हमको चिट्ठी भेजें और हम आपक चिट्ठी जोगाल बैठे रोला। तो दगड़ियों अब चलता जौनसार और घूमिका नंदा तो अपर बैणुते सुना दू फकीरा सिंह चौहान का आवाज़ में जौनसारी गीत।

अभी हमर दीदी भूली सुने छ फकीरा सिंह चौहानक आवाजमा ई सुन्दर सी जौनसरी गीत। बैण्यू अब बगत हुई गया कार्यक्रम सम्पन्न करने के, तो आप अपर दगड़े ममता बड़ोलत है जनों को वास्ता कार्यक्रम सम्पन्न करने की अनुमति दिया और हैं को वार कौन फिर भिटोला, तब तक वास्ता नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनानों का वास्ता, यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 1 बजने को अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में

0: नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेल्लू और वीपी शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 24वीं बोर्ड बैठक में राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी। प्रदेश में आगामी मॉनसून सीजन के आगमन से पहले आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बागेश्वर में आपदा राहत सामग्री रवाना। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सहजपुर और मसूरी क्षेत्र में व्यापक ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नैनीताल में रन फॉर योगा के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग कर फिट इंडिया का संदेश दिया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 24वीं बोर्ड बैठक में राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने समेत कई अहम प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव और ग्लोबल फूड फेस्टिवल आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। देहरादून स्थित IHM गड़ीकेंड में स्थित पर्यटन मुख्यालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में पर्यटन विकास परिषद की 24वीं बोर्ड बैठक में सभी बोर्ड सदस्यों तथा उनके नामित प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल कॉन्क्लेव कौसानी को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव पहली बार प्रदेश में आयोजित होगा और इसमें 500 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विशेषज्ञ सहभागिता करेंगे। इसका आयोजन नवंबर माह में देहरादून व रामनगर में उत्तराखंड इंटरनेशनल कॉन्क्लेव फूड फेस्टिवल आदि कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही विशेष पर्यटन के लिए त्रियुगी नारायण, कार्तिक स्वामी व कैंची धाम के विकास को लेकर भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्रदेश में आगामी मॉनसून सीजन के आगमन से पहले आपदा प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बागेश्वर में रेड क्रॉस भवन से संभावित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर ने राहत व बचाव व्यवस्था को मजबूत करते हुए कपकोट और गरुड़ क्षेत्रों के लिए आपदा राहत सामग्री रवाना की है। मॉनसून के दौरान सड़कें बंद होने, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की आकांक्षाओं को देखते हुए कपकोट और गरुड़ क्षेत्रों में पहले से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता मिल सके। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी बागेश्वर के चेयरमैन इंद्र सिंह फरसवाण ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देशन में संस्था लगातार मानव सेवक के कार्यों में जुटी हुई है।
3: शुरू होने वाला है तो इसके तहत जो हमारे पास सामग्री उपलब्ध थी, राहत सामग्री जैसे किचन सेट हो गए, कंबल हो गए, तिरपाल हो गए, अन्य सामग्री जो भी हमारे पास उपलब्ध थी, आज हमने रेड क्रॉस भवन से कार्यालय से उसको रवानगी कर रखी है और हमारे सभी सम्मानित सदस्य, सम्मानित पदाधिकारी लगातार जनहित में, क्षेत्र में लगातार जन सेवा में लगे रहते हैं कि इसी के तहत अगर कहीं पर

0: दिक्कत आती है, शासन प्रशासन जो भी हमसे सहयोग की अपेक्षा करता है हम लगातार तत्पर रहते हैं।
1: उन्होंने बताया कि मॉनसून सीजन को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री का भंडारण किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर जिले के किसी भी हिस्से में तत्काल सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में प्रभावित परिवारों तक शीघ्र राहत पहुंचाना संस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए रेडक्रॉस की पूरी टीम पूरी तरह से तैयार है। कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी 20 जून को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के हस्तांतरण कार्यक्रम तथा 26 जून को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के उत्तराखंड प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के हस्तांतरण अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। वहीं श्री जोशी ने आगामी 26 जून को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पंतनगर व रुद्रपुर में प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों के दौरान किसानों के हितों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं एवं नवाचारों को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटतल्ला ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करते हुए उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2025 के लिए जारी नेशनल लेवल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट सूची में विद्यालय को 95.8% अंक मिले हैं। शिक्षक सत्येंद्र भंडारी ने इस उपलब्धि का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, अभिभावकों के सहयोग और शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन को दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को ही और बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आगे भी निरंतर प्रयास किए जाएंगे। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की ने इस उपलब्धि को जनपद के लिए गौरव का विषय बताया है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDDA ने अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सहजपुर और मसूरी क्षेत्र में व्यापक ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। प्राधिकरण का कहना है कि बिना स्वीकृत किए जाने वाले निर्माण कार्यों और अवैध भूमि विकास को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के अनुसार संबंधित भू स्वामियों की ओर से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त नहीं की गई थी, जिसके चलते नियमानुसार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं बल्कि क्षेत्र में सुनियोजित और नियमानुसार विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग भविष्य में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इसलिए बिना अनुमति के निर्माण कार्यों के खिलाफ सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य वैधानिक कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि ने नैनीताल के प्रसिद्ध और पारिस्थितिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र चाइना पीक यानी नैना पीक पर स्थित वन चौकी के भीतर चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में सदस्य सचिव ने बताया कि 14 जून 2026 को ट्रैकिंग के दौरान उन्होंने खुद देखा कि वन चौकी पर तैनात एक वन रक्षक यहां मैगी, प्लास्टिक की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्कुट जैसी चीजें बेच रहा था। पूछताछ करने पर वन रक्षक ने दावा किया कि उसके पास इसकी आधिकारिक अनुमति है, जिसके बाद प्राधिकरण ने मामले की कानूनी और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने DFO से इस पूरे मामले की तत्काल और निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। आगामी 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नैनीताल जिले में योग को लेकर उत्साह दिख रहा है। इसी क्रम में मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में रन फॉर योगा के आयोजन में स्कूली बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने योग के लिए दौड़ में हिस्सा लेकर फिट इंडिया का संदेश दिया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम की भी जानकारी कार्यक्रम संयोजक आयुष विभाग द्वारा दी गई। अपर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी नैनीताल डॉ बबीता कन्याल ने बताया कि 21 से 21 जून तक आयुष विभाग द्वारा 100 कार्यक्रम आयोजित कर 10,000

0: लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाएगा।
1: पूरे 21 मई से 21 जून तक 100 प्रोग्राम हमने योगा दिवस पे आयोजित किए गए हैं, जिसमें लगभग 10,000 लोगों को हमने योग के लिए प्रेरित किया है। और इस वर्ष जो योग की थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, अर्थात मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ हम कैसे संतुलित शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहें।
0: उन्होंने बताया कि योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए रन फॉर योगा कराया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मोहन पाठक द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 24वीं बोर्ड बैठक में राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी। प्रदेश में आगामी मॉनसून सीजन के आगमन से पहले आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बागेश्वर में आपदा राहत सामग्री रवाना। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सहसपुर और मसूरी क्षेत्र में व्यापक ध्वस्तीकरण कार्यवाही की। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नैनीताल में रन फॉर योगा के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग कर फिट इंडिया का संदेश दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। समय 1:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये सर था लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम था आम्रपाली, गीत था हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का था। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म का नाम कन्यादान।

काली टोपी लाटरवाल। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत। युगल स्वर थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे चित्रगुप्त। श्रोतम, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और

0: और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है, मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। यह झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहां तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियां प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी,
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था मंगल पांडे।
2: ओ मंगल पांडे।
3: हाँ।

0: मंगल पांडे। 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
1: अच्छा।
0: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे, अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी।
5: सही कहे।

0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई।
2: ओह,
1: सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा?
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
3: हमें कुछ ऐसा चल नहीं सकता।
2: उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
4: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
5: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
4: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था। शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था। गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
4: भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
1: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
6: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
7: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद।
1: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
9: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
1: सारी छावनी में खलबली मच गई।
0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
6: अरेस्ट करो!
9: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
0: दादी जी, फिर क्या हुआ?
1: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: Tum, Bande Ko, Tikona Mangtahai, Durant, Hospital Pejo!
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गोरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
7: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।

0: देवेंद्र नाश्ता कर लो।
1: माँ आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
2: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं, तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
1: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
2: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
1: अच्छा माँ।
3: माँ
1: लो देवेंद्र भी आ गया।
3: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
2: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
1: ठीक है माँ।
3: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
1: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
3: ये देखो दीदी, ये मारा।
1: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
3: अरे ये मारा।
1: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
3: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
1: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
3: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
2: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
1: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
4: हमें अंदर आने दो।
1: अरे क्यों?
5: ए लड़की रास्ते से हट जा।
1: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
4: लड़की हट।
1: माँ
4: ये चाकू देख रही है ना,
5: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
1: अरे
5: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
1: क्या हुआ? देखो जल्दी।
0: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
4: शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
1: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
4: ये चाकू देख रही है ना,
1: छोड़ दो।
0: मुझे मत मारो,
1: कुछ मत करो।
0: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
4: जल्दी।
0: याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
5: बहानेबाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
0: अरे मेरे बात को छोड़ो,
1: मेरी माँ को छोड़ो।
4: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज
0: नहीं।
5: अरे सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
0: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
1: देवेंद्र।
3: हाँ दीदी।
1: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
3: अच्छा,
1: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
3: अच्छा।
1: हेलो।
4: हाँ बेटा बोलो।
1: पापा। पापा।
4: हाँ बोलो।
1: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
4: कौन घुसा है?
1: माँ को बहुत मार रहे हैं।
4: अच्छा तुम घबराओ नहीं, नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
1: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
3: अच्छा।
1: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ
6: बचाओ। और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
7: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको, कशिका को।
8: वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
2: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
7: देखो ना सबकी जान
2: बच्ची।
6: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
10: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग।
12: आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2 बजने को अब समाचार होंगे।
13: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26, surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of 3-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And now the news in detail. The G7 leaders have adopted a series of declarations focusing on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. In their statement, the leaders welcomed the deal between the United States and Iran under US President Donald Trump. The leaders emphasized the importance of safe maritime passage through the Strait of Hormuz and supported steps to strengthen regional security. In another declaration, the G7 pledged to intensify action against drug trafficking, describing it as a growing threat to national security, public health and economic stability. Partner countries Brazil and South Korea also backed the initiative. They also proposed a G7 plus ports network to enhance intelligence sharing and disrupt trafficking routes alongside deeper cooperation with international agencies such as Interpol and UNODC, and a stronger focus on tracing and recovering illicit financial assets. Prime Minister Narendra Modi is set to participate in a series of high-level outreach programs today on the second day of his visit to Avignon in France for the ongoing G7 summit. However, attention is firmly focused on his bilateral meeting with United States President Donald Trump, scheduled for this evening. This will be the first face-to-face interaction between the two leaders since their last meeting in Washington, D.C. in February 2025. The meeting is being seen as strategically significant as India continues to consolidate its position as a major global power, with New Delhi playing an increasingly active role in shaping responses to global challenges. Our correspondent Ankit Kumar joins us live from Avignon with the latest updates on the G7 developments. Ankit, what regional and global issues are expected to be discussed between both the leaders?
14: Yes, Sagun. The meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump is really significant in many ways. Although both leaders met yesterday during the group photograph and working session and had a brief interaction also, but all eyes are now formally set on the bilateral meeting. As the two leaders are meeting after a long time, it's naturally drawing widespread attention. Sagun, it is believed that the West Asia crisis could be discussed during this their meeting, especially since the US and Iran have recently finalized a deal to end their war and reopen the Strait of Hormuz. So an agreement on this is also expected very soon. So India has always been a strong advocate for peace and dialogue, so comprehensive discussions are expected on the issue. Besides this progress on the

0: 9% of the country's geographical area is affected by land degradation and desertification.
1: We fully reaffirm our ministry's commitment declared by the Honorable Prime Minister during the COP 2014 Delhi Declaration, where it was pledged that we would work toward the restoration of 26 million hectares of land by the year 2030. Under the Government of India's Green India Mission, we have already carried out work on approximately 1.7 lakh hectares of land. Furthermore, with the support of CAMPA, we have also successfully undertaken forestation effort across 3.2 lakh hectare of land over the past 5 years.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today said India has emerged as a major electronics manufacturing hub and is now the world's sixth largest exporter of electronics. He was speaking after inaugurating the new manufacturing facility of US-based company Jabil at Ranjangaon MIDC in Pune. Mr. Vaishnav said that under the leadership of PM Modi, India has transformed into a global electronics manufacturing destination and is exporting products to markets across the world. Three new ministers were inducted into the Puducherry cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shivkulandu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. Lieutenant Governor K. Kailashnathan administered the oath of office and secrecy. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper. It clarified that there is no leaked paper for the re-exam. It said that fake proof videos showing chats from before the exam are also being circulated. NTA also shared a video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country.
2: See, NTA is committed 100% to ensure that no malpractice will happen. Every question paper has been made in a complete secure manner. We have added layers of security to what is normally done. We have taken every single precaution to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers or translating them or printing them or moving them or storing them till the date of the examination is compromised in any manner.
0: In Manipur, security forces intensified counter-insurgency and law enforcement operations across the state, arresting three militants and destroying 26 illegal bunkers in separate operations, said the officials today. The militants were arrested from different locations in Imphal West District. Police said they were allegedly involved in multiple violent and criminal activities. US President Donald Trump has criticized Israel's military campaign against Hezbollah in Lebanon, saying the conflict has continued for too long and has led to excessive civilian casualties. Speaking on the sidelines of the G7 summit in France, Mr. Trump said Israel was fighting Hezbollah too long and that too many people are being killed. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. In cricket, India was 70 for 1 in 8-point fan overs against Afghanistan on the second one-day international of the three-match series in Lucknow. Early, Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 225 points to 77,033, while the Nifty advanced 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Evian, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26, surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur, 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7 प्लस पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
4: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
3: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी

0: द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़ से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख विदेशी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओस के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
5: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। सैनिक साथियों, देशभक्ति की भावना थोपी नहीं जाती, बल्कि ये तो अपने आप में दिल में पैदा होती है। इसी देशभक्ति भावना के कारण हमारे सैनिक देश के लिए जान तक कुर्बान कर देते हैं। ऐसे ही जाबाज थे मेजर सुखविंदर जीत सिंह रंधावा, जो अंतिम सांस तक देश सेवा में लगे रहे।

सैनिक साथियों, सुखविंदरजीत सिंह का जन्म पंजाब के गुरुदासपुर ज़िले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री एस एस रंधावा और माता का नाम श्रीमती गुरदीप रंधावा था। लेकिन बचपन से ही भारतीय सेना में इनके जाने की इच्छा थी और प्रयास के बाद इनका चयन CDS में हो गया और भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की 167 मीडियम रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथी सुखविंदर जीत सिंह ने कई वर्षों तक अपने मूल बटालियन में अलग अलग स्थानों पर सेवाएं दी और इसके बाद इन्हें आतंक विरोधी अभियान के लिए राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में प्रतिनियुक्त किया गया। इसके लिए जून 1997 में अनंतनाग जिले में तैनात किया गया। ये क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र था, लेकिन 17 जून 1997 को विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि अनंतनाग जिले के काशुट गांव में सर्च एंड डिस्ट्रॉय अभियान चलाया जा रहा है और इसके लेकर मेजर रंधावा को नेतृत्व का कार्य सौंपा गया है। जैसे ही मेजर रंधावा सैनिकों के उस संदिग्ध क्षेत्र के निकट पहुंचे, अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई और ये घिर गए। शुरू में ही रंधावा को गोली लग गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अपने जान की परवाह किए बिना वे आतंकवादियों की ओर बढ़ चले और एक आतंकवादी को मार गिराया। वहीं एक अन्य आतंकवादी को हथगोले से आक्रमण कर मेजर रंधावा ने अपने साहस और वीरता से उसे भी मार गिराया।

लेकिन सैनिक साथियों मेजर रंधावा को चोट से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। ऐसे में इनके साथी सुरक्षित स्थान की ओर इन्हें ले आए, लेकिन अपने साथियों से उन्होंने एक ही बात कही, तुम मेरी फिक्र मत कर, उस टेररिस्ट को मार। और सैनिक साथियों मेजर रंधावा की वीरतापूर्ण बातों से प्रेरित होकर साथी सैनिकों ने अपने जीवन की रक्षा की, बल्कि शेष आतंकवादियों से निपटने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। और अंत में सैनिक साथियों मेजर अत्यधिक रक्तस्राव के कारण देश के लिए शहीद हो गए।

सैनिक साथियों, मेजर सुखविंदरजीत सिंह रंधावा की वीरता, साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत इन्हें भारत सरकार द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और मेजर रंधावा के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए इनकी धर्मपत्नी वीरांगना श्रीमती रविंद्र रंधावा, उन्होंने 1988 में सेना में कमीशन प्राप्त किया। श्रोताओं, को वे कमीशन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कमीशन अधिकारी है जिन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक अपनी सेवाएं दी की। सैनिक साथियों, सलाम करते ऐसे वीरों को जो अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3 बजे ही लीजिए सुनिए एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपये तक पहुंचा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे पत्र का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह द्वारा जारी एक पत्र में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी का प्रस्ताव है। नीट यूजी की आगामी 21 जून को होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परिवहन विभाग की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। चमोली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास जन जागरूकता कार्यक्रमों के साथ आज स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में रन फॉर योगा के तहत क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। रुद्रप्रयाग जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा आपराधिक व संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया। रुद्रप्रयाग में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात को सुगम तथा सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय सैन्य अकादमी IMA की 35वीं रेगुलर और 37वीं टेक्निकल कोर्स के पूर्व अधिकारियों ने चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जिलों के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा व गर्जन के संभावना व्यक्त की है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 3:02 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नई तराने।

ये सर्थे ही में शेरेश में अक्षय घोषाल की फिल्म का नाम था आशिक बनाया आपने। गीत को संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया ने। आइए आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अगला गीत, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में, फिल्म का नाम आशिक। गीतकार हैं समीर और संगीतकार संजीव दर्शन।

अब हमारे श्रोता जहाँ, हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

जरा हटके जरा बच के अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत। आवाज़ें थी अल्तमश फरीदी और साथियों की। श्रोता सुन रहे गाने नए तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत अरमान मलिक की आवाज़ में फिल्म का नाम है असहर। गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

दिलीप सेन समीर सेन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे समीर की शब्द रचना। आभासी थी ए हरिहरन और चित्रा की, और फिल्म का नाम था जिद्दी। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म का नाम खामोशियां।

पलक मुच्छल की आवाज में गीत था, फिल्म का नाम था ए मैसे धुरी। शब्द थे मनोज मुंतशिर की और संगीत अमाल मलिक का था। श्रोताओं, गानी नई तराने आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। यह है कार्यक्रम का अगला गीत, केके की आवाज में। फिल्म का नाम है काइट्स। गीत है नासिर फराज का और संगीत राजेश रोशन का है।

के और साथियों की आवाज़ें थी। फिल्म का नाम था काइट्स। समय 3:45 और 5 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे गाने नए तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। यह कार्यक्रम का अगला गीत अलीशा चिनोय और जुबिन गर्ग की आवाज़ में। फिल्म का नाम है क्रिश 3।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: आइए सुनते हैं कि ऐसे चित्रा उदित नारायण और साथियों को फिल्म का नाम है कोई मिल गया। गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही गाने नहीं तराने का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आपको याद दिला दें, शाम 4:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक कलाकार। आज के कलाकार होंगे इम्तियाज अली। आकाशवाणी का ये 13 दिन केंद्र है, शाम के 4 बजे ही। आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप जयवीर सिंह से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपये पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 24वीं बोर्ड बैठक में राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने समेत कई अहम प्रस्ताव की मंजूरी। प्रदेश में आगामी मॉनसून सीजन के आगमन से पहले आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बागेश्वर में आपदा राहत सामग्री रवाना। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सहसपुर और मसूरी क्षेत्र में व्यापक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही तेज की। रुद्रप्रयाग के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोट तल्लम ने राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2025 के लिए जारी नेशनल लेवल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट सूची में 95.8% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है। रुद्रप्रयाग में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात को सुगम तथा सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जिलों के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा व गर्जन की संभावना व्यक्त की है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का 13 दिन केंद्र। शाम के 4:02 हुए हैं। लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए भगवान दास मिश्र का सारंगी पर बजाय राग पूर्या कल्याण।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत भगवान दास मिश्र का सारंगी पर बजाय राग पूरिया कल्याण। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक कलाकार।

श्रोताओं, कार्यक्रम में कलाकार में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के कलाकार हैं हिंदी फिल्मों के प्रमुख पटकथा लेखक, निर्माता और निर्देशक इम्तियाज अली, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत जी टीवी और दूरदर्शन की टीवी कार्यक्रमों के निर्देशन से की, जिन्होंने टेलीफिल्म का निर्माण भी किया, साथ ही हिंदी फिल्मों के निर्माण में इन्होंने सफलता प्राप्त की। आज के इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे इनके जीवन से जुड़ी बातें, साथ ही सुनवाएंगे इनकी फिल्मों से फिल्मी गीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस गीत के साथ।

से पहले उन्होंने जी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र और दूरदर्शन के लिए इम्तिहान जैसी धारावाहिक कार्यक्रमों का निर्देशन किया। इसके बाद में इन्होंने कई फीचर फिल्मों का निर्माण किया और साथ में इन्होंने 2009 में बॉलीवुड फिल्मों की ओर रुख किया, जहां इन्होंने अभिनेता अभय देओल और आयशा टकिया जैसी अभिनेत्री को लेकर फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म थी सोचाना था और श्रोताओं इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया पर इन्हें सफलता नहीं मिली। पर इन्हें सफलता मिली, जी हाँ, जी चर्चा करेंगे। इस गीत की बात सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में कलाकार आज के कलाकार हैं पटकथा लेखक निर्माता और निर्देशक इम्तियाज अली। श्रोताओं फिल्मों में करियर

पटकथा लेखक निर्माता निर्देशक इम्तियाज़ अली को सफलता मिली सन 2007 की फिल्म जपी मैडसी, जिसमें अभिनेता थे शाहिद कपूर और अभिनेत्री थी करीना कपूर। एरिसन को बहुत ही सराहा गया और ये फिल्म बेहद सफल रही। इसके लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार भी प्राप्त किया, साथ ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए फिल्म फेयर का इन्हें नामांकन भी मिला। श्रोताओं, ये उस समय की रोमांटिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म जपी मैडसी।

श्रोताओं, इसके बाद इन्होंने लवाजकल, रॉक स्टार, कॉकटेल, हाईवे और तमाशे जैसी फिल्मों का निर्देशन किया और इसके बाद इन्होंने फिल्म जब हिरन सेजल, लैला मजनू जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। साथ ही इन्होंने नेटफ्लिक्स पर पंजाबी संगीतकार अमर सिंह चमकीला पर फिल्म का निर्देशन किया जिसे खूब पसंद किया गया। आइए अब आपको सुनवाते हैं इनके द्वारा निर्देशित और निर्मित फिल्म से कार्यक्रम का ही अगला गीत।

शतम पटका था लेखक और निर्माता निर्देशक इम्तियाज अली ने फिल्मों में भी अभिनय किया है। वो फिल्में रही हैं वर्ष 2004 की ब्लैक फ्राइडे और 2025 की फिल्म मेट्रो डिनो में। जी हाँ शतम, इन खूबसूरत फिल्मों में के साथ साथ इन्होंने अनेक फिल्मों के लिए इनका जो लेखन है, निर्माण निर्देशन है, वो आज भी जारी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इनकी और भी फिल्में हमारे सामने होगी। श्रोताओं, आज इम्तियाज अली के स्वस्थ और सुखी जीवन की हम कामना करते सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत इनकी फिल्म से। फिल्म का नाम तमाशा।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। आज के कलाकार थे निर्माता निर्देशक इम्तियाज अली। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 5 बजने को है, अब समय हो चला है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती देने संबंधी तंत्रों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पर बल दिया। सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस सत्र में उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 भारतीय प्रतिभाओं और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एनेली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया।
3: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
1: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 6 विकेट पर 380 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज रात्रि 9:15 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम स्पॉटलाइट एवं 9:30 बजे भी दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम रिले किया जाएगा। क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून का विशेष कार्यक्रम राज्य दर्शन आप सुनेंगे 7:50 पर। अब से थोड़ी ही देर में प्रसारित होगा युवाओं का दैनिक कार्यक्रम 5:10 पर युववाणी। शाम 5:45 पर हमारे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे गढ़वाली रूपक भारत माँ की आत्मा कुस्वर वंदे मातरम, आलेख श्री किरण कुमार शर्मा, प्रस्तुति श्री विनय ध्यानी एवं प्रस्तुति सहयोग रॉबिन कर्माकर। किसानों के लिए दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत शाम 7:00 बजे और आज आप डॉक्टर शरद पांडे से विकास चमोली की भेंटवार्ता सुनेंगे। विषय है प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता।

रात्रि 8 बजे अंग्रेजी वार्ता के अंतर्गत मिसेज आशा रानी कपूर द्वारा ट्रेडिशनल विजडम इन मॉडर्न टाइम्स विषय पर वार्ता सुनेंगे। रात्रि 8:10 पर विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 साल और 10 बजे का समय रहेगा श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब नजर डालते हैं कल की तीनों सभाओं के कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। कल शाम 4 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। कल रात्रि 9:15 दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम स्पॉटलाइट। कल सुबह शैल संगीत के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे सुनील कुमार के स्वर में जॉन सारे गीत सुबह 7:30। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा 8:30। क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी सुबह 9:00। सदाबहार फिल्मी गीत कल श्रोता सुनेंगे सुबह 9:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुबह 10:02 पर और सुबह 10:35 पर हमारे श्रोता कुमाऊनी लोकगीत सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा 11:00 और कल रात्रि 10:30 कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे रॉबिन कर्माकर के स्वर में भजन। हमारी बहनों का कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 12:30 रेडियो सखी में स्वयं बने झांसी की रानी। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का समय दोपहर 2:30। हमारे दैनिक कार्यक्रमों का समय वही युववाणी 5:10 चिट्ठी पत्री एवं लोकगीत ग्राम जगत कार्यक्रम में शाम 5:45 पर और शाम 7:00 कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर सुशांत राज द्वारा वार्ता। विषय है चार धाम यात्रा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। 7:50 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून का विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम कल शाम 8:00 और रात्रि 8:10 पर विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 साल। इसी के साथ हमारे आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी।

0: ढलती शाम का पैगाम है, प्रकृति का सुंदर नाम है, हर पत्ता जैसे गाता गीत, हर मौसम का सम्मान है।
1: धरती जल और नीला गगन जीवन की पहचान है, इनकी रक्षा का जोले संकल्प वही सच्चा इंसान है। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन अग्रवाल
0: और मैं सोनाली कठैत। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी शाम अच्छे से बीत रही होगी। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि हमारी धरती केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं बल्कि वो आंगन है जहाँ जीवन पलता है। यहाँ हम सपने बुनते हैं, वो सपने जो आगे हमारे भविष्य को आकार देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, और इसलिए तो अपनी धरती का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कितनी सारी परेशानियों से हमारी धरती जूझ रही है, और उन सब में से एक है धरती का सूखना। दोस्तों, उसकी हरियाली कम होना और उसकी जो नमी है उसको कम होना, ये केवल प्रकृति के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए चिंता का बेहद महत्वपूर्ण विषय है। और आज इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे दोस्तों, कि कैसे हम युवा इस संकट को दूर करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन उससे पहले सिमरन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म बैंड बाजा बारात से, बेनी दयाल और हिमानी कपूर की आवाज में।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि बचपन में जिन रास्तों के किनारे घने पेड़ हुआ करते थे, आज उनमें से कई जगह हमारे को खाली नजर आते हैं। जिन तालाबों में कभी पानी लबालब भरा रहता था, वो आज कई बार सूखे दिखाई देते हैं। और जो धरती कभी हरियाली की चादर ओढ़े रहती थी, वो आज धीरे धीरे कहीं कहीं बंजर होती जा रही है।
3: सिमरन, वो कहते हैं ना कि धरती हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। और जब बात धरती को हरा भरा, उपजाऊ और जीवन से भरपूर बनाए रखने की हो, तो हम युवाओं की भूमिका वहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा सोनाली। और दोस्तों, जब किसी क्षेत्र की मिट्टी अपनी उर्वरता खोने लगती है, तो वहाँ पानी की उपलब्धता भी कम हो जाती है, फिर पेड़ पौधे घटने लगते हैं और जमीन खेती या हरियाली के लिए कम उपयोगी हो जाती है, तो उसे भूमि क्षरण या फिर लैंड डिग्रेडेशन की दिशा में बढ़ती हुई स्थिति माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में लगभग 30% भूमि किसी न किसी रूप में भूमि क्षरण से प्रभावित है। इसके लिए यह विषय हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
3: बिल्कुल। और पता है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजहों में अनियंत्रित पेड़ों की कटाई, भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर का अत्यधिक इस्तेमाल, मिट्टी का कटाव यानी सोयल इरोजन और जलवायु परिवर्तन शामिल है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि इसका समाधान भी हमारे पास है और इसमें हम युवा अगर कोशिश करें तो बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।
2: तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जल संरक्षण की। ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी केवल हमारी प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि धरती की जीवन रेखा है। जहाँ पानी बसता है, वहाँ हरियाली टिकती है, मिट्टी मजबूत रहती है, भूमि बंजर होने से भी बचती है। और इसके लिए युवा अपने घर, कॉलेज और समुदाय में वर्षा जल संरक्षण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी बढ़ावा दे सकते हैं।
3: जी हाँ। और फिर छोटी छोटी कोशिशें जैसे नल खुला ना छोड़ना, पानी का सोच समझ कर उपयोग करना और जल संरक्षण अभियानों में भाग लेना भी हमारे काम आ सकता है।
2: और फिर वृक्षारोपण भी एक प्रभावी कदम है दोस्तों। एक पेड़ केवल छाया ही नहीं देता, बल्कि मिट्टी को भी बांधे रखता है। वर्षा के जल को जमीन में समाने में मदद करता है और स्थानीय वातावरण को संतुलित बनाए रखता है।
3: जी हाँ, इससे सॉइल इरोजन भी रुकता है। और आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि अगर हर एक युवा हर वर्ष एक पेड़ लगाए, तो कितनी हरियाली हम बढ़ा पाएंगे। और आज के युवा तो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं, जिसका यूज करके हम पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं।
2: बिल्कुल दोस्तों, स्थानीय जल स्रोतों की सफाई के लिए अभियान भी युवा चला सकते हैं और लोगों को संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। और पता है सोनाली, कई युवा तो आज इको क्लब, एनजीओस और सामुदायिक अभियानों के माध्यम से तालाबों के संरक्षण, पौधारोपण और जल संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं।
3: बिल्कुल।

दोस्तों, जब हमारी धरती स्वस्थ होगी तभी खेत हरे होंगे, नदियां बहेंगी, जल जीवित रहेंगे, जंगल जीवित रहेंगे और आने वाली जनरेशन भी इस खूबसूरती का आनंद ले पाएगी। धरती हमारी पहचान है और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये गीत फिल्म दम लगा के हरीशा से, मोनाली ठाकुर की आवाज़ में।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: वैसे सिमरन, आज के वक्त में देखें तो दुनिया का हर हिस्सा पहले की तुलना में कई ज्यादा जुड़ा हुआ है। आज एक देश में होने वाली कोई भी घटना का असर दूसरे देशों तक पहुंच जाता है, वो भी बहुत जल्दी, चाहे वो ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो या खेल, है ना?
4: बिल्कुल सोनाली, और यही जुड़ाव हमें आज के विषय तक लेकर आता है जो है युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति जागरूकता। तो सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस होते क्या है। सरल शब्दों में कहें तो जब अलग अलग देश एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, बातचीत करते हैं, व्यापार करते हैं, समझौते करते हैं या फिर किसी वैश्विक समस्या का मिलकर समाधान खोजते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है।
3: जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के लिए जब भारत किसी दूसरे देश के साथ व्यापार बढ़ाता है, छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराता है, साइंटिफिक रिसर्च पर काम करता है या जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर साथ मिलकर काम करता है, तो ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा होते हैं।
4: और दोस्तों, आज के युवाओं के लिए इन विषयों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आज का युवा एक वैश्विक नागरिक यानी ग्लोबल सिटीजन भी है। आज भारत के लाखों युवा विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, विभिन्न देशों की कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वैश्विक परियोजनाओं में हिस्सा ले रहे हैं और दुनिया भर के लोगों के साथ संवाद भी कर रहे हैं।
3: बिल्कुल, और ऐसे में ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया के अलग अलग देशों की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, नीतियां और आपसी संबंध किस तरह काम करते हैं।
4: दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति जागरूकता युवाओं में कई महत्वपूर्ण गुण भी विकसित करती है, जैसे दूसरी संस्कृतियों के प्रति सम्मान, वैश्विक दृष्टिकोण, संवाद की क्षमता और विविधता को समझने की सोच। और जब हम दुनिया के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो हमारे लिए भी नई संभावनाएं दोस्तों खुल जाती हैं। करियर के क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ आज काफी महत्वपूर्ण हो गई है।
3: बिल्कुल, और इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्टेड रहने के लिए हम ट्रस्टेड सोर्सेज से न्यूज देख सकते हैं, वैश्विक मुद्दों की जानकारी ले सकते हैं, उनके कल्चर के बारे में भी जान सकते हैं, और आजकल तो ये काम आप मूवीज देख कर भी कर सकते हैं। दोस्तों, एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी आपको मिल जाएगी।
4: और पता है सोनाली, इसके अलावा नई भाषा सीखना भी दुनिया को समझने का एक शानदार माध्यम है।
3: बिल्कुल,
4: जब हम किसी नई भाषा को सीखते हैं तो हम केवल शब्द नहीं सीखते दोस्तों, बल्कि उस समाज और संस्कृति को भी समझने लगते हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों, जितना हम दुनिया को समझते हैं उतना ही हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता रहता है।
3: बिल्कुल, और यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है सिमरन, ऐसे युवा जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और साथ ही दुनिया को भी समझते हैं, क्योंकि स्थानीय सोच के साथ वैश्विक समझ भी उतनी ही जरूरी है।
4: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों, दुनिया को जानने की जिज्ञासा बनाए रखें, नए विचारों को अपनाएं और एक जागरूक, जिम्मेदार तथा संवेदनशील वैश्विक नागरिक बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक और अगले गीत का, जो कि लिया गया है फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना से, जिसको आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

0: वेलकम बैक लिस्टनर्स, प्रोग्राम चल रहा है युवानी, आप सुन रहे हैं इसे सिमरन और सोनाली के साथ। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे युवाओं के सपनों को और उसके भविष्य से जुड़ा है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए खेल से रोजगार।
1: दोस्तों, पहले खेल को सिर्फ एंटरटेनमेंट और फिटनेस से जोड़ा जाता था, लेकिन आज के समय में हमारी स्पोर्ट्स की दुनिया जो है वो युवाओं के लिए कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज भी अपने साथ लेकर आती है। अब युवा अपनी खेल प्रतिभा के दम पर ना सिर्फ एक पहचान बना सकते हैं बल्कि एक सक्सेसफुल करियर भी बना सकते हैं।
0: जी हाँ सोनाली, और पता है दोस्तों, उत्तराखंड की बात करें तो ये राज्य हमेशा से प्रतिभाशाली युवाओं और खेल भावना के लिए जाना जाता है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ के युवाओं में मेहनत, अनुशासन और कुछ कर दिखाने का जज्बा है, चाहे बात हो एथलेटिक्स की, बॉक्सिंग की, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स की ही बात हो। उत्तराखंड के युवा हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं।
1: हाँ, और अब तो मल्टीपल करियर ऑप्शंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं सिमरन। अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है तो वो प्रोफेशनल एथलीट बन सकता है। इसके अलावा भी कई सारे फील्ड्स अब देखने को मिल रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स में कोचिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट मैनेजमेंट, स्पोर्ट जर्नलिज्म और स्पोर्ट मार्केटिंग, है ना?
0: बिल्कुल, और यानी कि स्पोर्ट्स में करियर अपॉर्चुनिटीज केवल मैदान तक ही सीमित नहीं है। अब दोस्तों, आज के समय में फिटनेस और स्पोर्ट्स कल्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग हेल्थ और फिटनेस से लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेन प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ रही है। युवाओं के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वे अपनी रुचि और स्किल्स को पहचाने और सही दिशा में मेहनत करके अपना करियर को डेवलप कर सके।
1: बिल्कुल, और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ तो एडवेंचर स्पोर्ट्स भी एक इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन है। ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रिवर राफ्टिंग, आज रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हमें इन सबसे मिल रही है।
0: इसके साथ ही दोस्तों, गवर्नमेंट और कई संस्थान भी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कॉम्पिटिशन्स और फैसिलिटीज उपलब्ध करा रहे हैं। ज़रूरत है कि युवा इन अपॉर्चुनिटीज का सही इस्तेमाल करें, सही समय पर इनको ले और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करता रहे।
1: बिल्कुल, क्योंकि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि डेडिकेशन, डिसिप्लिन और हार्डवर्क से आती है। और पता है सिमरन, खेल तो हमें ये भी सिखाता है कि हर हार के बाद कैसे वापस उठकर आगे बढ़ना है।
0: तो उत्तराखंड के युवा साथियों, अगर आपके अंदर पैशन है और कुछ कर दिखाने की इच्छा है तो खेल को सिर्फ हॉबी मत समझिए। अगर आपके अंदर जुनून है तो खेल को केवल शौक ना समझें बल्कि इसे करियर विकल्प के रूप में भी देखें। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत, जो कि लिया गया है चेन्नई एक्सप्रेस से, जिसको आवाज दी है चिन्मय श्रीपद ने।

0: दोस्तों, कार्यक्रम युवानी में समय हो गया आपसे विदा लेने का, बट उससे पहले लिख लीजिए हमारा पता, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूबल है। दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवानी, द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी, देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल। दोस्तों, हमारा पिन कोड है 2480001।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने विचार हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और आज के लिए हमें अनिश अनाली और सिमरन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम का सभी सुणदर होता है आपका दगड़िया जयप्रकाश पंवार की तरफ बिटन सेवा सौंदी नमस्कार। और ब्याल देखो मौसम भी नहीं और आज को मौसम भी लगभग वनी चे कभी घाम होना तो कभी छैल। चला ये जून का मौसम में थोड़ा सी राहत मिलनी चाहिए कम से कम है। और दगड़ियों देखा होला कि आजकल पूरी दुनिया में मौसम बदलाव का बारे में लगातार चर्चा होनी रही, किले कि मौसम केवल हमारा उत्तराखंड तक सीमित ही तो पूरी दुनिया में कहीं घाम च कहीं बरखा च कहीं बतवाणी च कहीं प्रदूषण होणो कभी धुआं होणो कभी आग लगनी तो पूरा यू एक वैश्विक विषय च मौसम बदलाव। और जैते हम दूसरा रूप में बुना जिनकी जलवायु परिवर्तन होणो च लगातार हर महीना में हर 6 महीना में जो वातावरण हो कहीं ना कहीं फर्क पड़गी मौसम में लगातार बदलाव होणो च। और जो हमारा देश और खासकर हिमालय हिमालय जो जो पूरी दुनिया का वास्ता जो जो बहुत ही आकर्षण को केंद्र रहा है सबसे ऊंची चोटियां हमारे यक्षिण हिमालय में। और हिमालय जो जो केवल भारत तक सीमित नहीं है, हिमालय की शुरुआत ये तय दूसरा रूप में हिंदू कुश हिमालय भी बोले जाऊँ तो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान आपका नेपाल भूटान चीन तिब्बत और म्यांमार तक जो पूर्व हिमालय की जो एक विस्तृत श्रृंखला च वह फैली च। अब मौसम को जब बदलाव होणो च तो वेगू सबसे ज़्यादा प्रभाव जो हर एक जगह होणो च। अभी देखियो अपन की यूरोप में भी कनाडा में भी जख बोल था कि बाकी यख तो बर्फीला इलाका छ है कनाडा में भी बर्फीला इलाका छ काफ़ी, लेकिन वह भी 45-50 डिग्री तक जो तापमान बढ़ गई। और वे से वखा लोग होता है मतलब अचानक ये बदलाव हुए महसूस हुए तो उनका भी कल्पना नहीं कर सके कि भाई कि हमारे अभी 45-50 डिग्री तक जो तापमान बढ़ सकते तो वहाँ से वह जो लोग छिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो उनकी बहुत सारी मतलब एकदम से कल्पना मतलब उनकी कल्पना का विपरीत जो मौसम जो होगी तो लोग होता तैयार हो पड़ लो कि भाई कि ब्याज भी हम बात करना चाह कि 2 डिग्री जो तापमान जो पूरी दुनिया में आने वाला समय में बढ़ने की संभावना चाहिए। और जब 2 डिग्री तापमान जो बढ़ लो तो हिमालय का जो हमारी हिमालय काटी छिन बर्फीली चोटी छिन वो जब गल ली तो वैसे होणु के छे कि नदियों में कभी बहुत ज़्यादा पानी आ जाणु और या फिर नदियाँ सूखनी छिन गाट गदेरा सूखना छिन केवल हमारा भारत का ना पूरा पाकिस्तान से लेकर पूरे हिमालय क्षेत्र का। और यह की जो बहुत सुंदर और विस्तृत नदियाँ जूंगा भरोसा जो करोड़ों लोग जो छिन अपनी खेती अपनी पानी हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना छिन वो भी प्रभावित होना छिन। आप ब्रह्मपुत्र से लेकर गंगा जमुना हैं आपका सिंधु नदी तमाम तरह की छोटी छोटी नदियों तो कोई हिसाब ही नहीं छ गाड गदरा सूखना छिन। अब ये जो विस्तृत प्रभाव जो हमारा पूरा हिमालय क्षेत्र में पड़नो छ और ये असर केवल यख तक नहीं होंगे वे असर जो पूरा दुनिया में कहीं ना कहीं होणो छ क्योंकि हिमालय जो पूरा जितने अभी समुद्र के जो चक्र से एक समुद्र से जो निकल वाष्पीकृत होंगे जो आसमान में जब बादल बढ़दन और वो हिमालय से टकराते हैं जो बरखा करदन तो वो पूरा चक्र जो बदलाव होगी। और ये मौसम बदलाव का अनुकूल जो अब हमते भी जो तैयारी करन पड़ ली केवल हम यहाँ के भरोसे नहीं रहा कि भाई वैश्विक समस्या है लेकिन यह समस्या हमारा स्थानीय स्तर पर भी हम तो वह पर ध्यान देना पड़ लो हमते जंगलों तो बचाण पड़ लो आग से बचाण पड़ लो पानी को सदुपयोग करन पड़ लो और छोटा छोटा इन उपाय करन पड़ ला जैसे कि हम पानी को दुरुपयोग न करूँ। तो छुई बात बहुत छिन आज कार्यक्रम में जो बहुत ही सुंदर एक विशेष गढ़वाली रूपक ले तो आना चाहम अगला कुछ समय बाद विषय होलो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष गढ़वाली रूपक भारत माँ की आत्मा को स्वर वंदे मातरम। आलेख होलो श्री किरण कुमार शर्मा जी को प्रस्तुति सहायक रॉबिन कर्माकर और प्रस्तुतकर्ता होला हमारा दलिया विनय ध्यानी। तो एक बार ध्यान लगा देना चिट्ठी gramjagat@gmail.com पर आप हम तय अपनी चिट्ठी पत्री पैटे सकदन और बोल चिट्ठी पत्री को जो कार्यक्रम हो दो वे माँ आपकी चिट्ठियों का भी हम शामिल कर ला और जरूर वे माँ आप अपने विचार भेजला कार्यक्रम तक कन और अच्छा बने सकता हम वे पर भी हम हमेशा ध्यान रखना के लिए कि आप श्रोता हमारा जो छिन वो हमारा आलोचक भी छिन और हमारा प्रशंसक भी छिन। तो कार्यक्रम की शुरुआत करना और
सुन्दा एक सुंदर सी कुमाऊनी गीत स्वर देना छिन दया शंकर फुलारा को।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
4: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
3: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
4: बल्ब, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
3: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
4: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
3: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
5: The all-new Nissan Revive अब CNG में
6: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर KG की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7-seater जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
5: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
7: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
8: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
9: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
10: तो दगड़ियों, अभी आप सुनना चाह कुछ रंत रैबार, और वैसे पहले आप सुनी कुमाऊनी गीत दया शंकर फुराला का स्वरमा। और अब विशेष ग्राम जगत की विशेष प्रस्तुति वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष गढ़वाली रूपक भारत माँ की आत्मा को स्वर वंदे मातरम। आलेख्य श्री किरण कुमार शर्मा को, प्रस्तुति सहायक रॉबिन कर्माकर और प्रस्तुतकर्ता चिन्ह हमारा दगड़िया विनय ध्यानी।

0: यो केवल गीत नहीं छ, यो छ भारत मा के आत्मा को स्वर। एक इंसर जैना गुलामी की अंधेरी रात मा स्वतंत्रता को सूरज उगाण को साहस दे। वंदे मातरम। जब जब यू गीत गूंज भारत की माटी माँ नए आत्मविश्वास जात, बंगाल की खाड़ी से हिमालय की चोटियों तक, ये गीतन करोड़ों भारतीयों का दिल माँ राष्ट्र प्रेम की अग्नि प्रज्वलित कर।
1: वंदे मातरम।
0: उत्तराखंड देवभूमि वीर भूमि, यक गढ़वाल और कुमाऊं का रस्तों से लेके रोला खोलों तक ये गीत गूंज और खूब गूंज, और इन गूंज की स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना बन गया। वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा उत्तराखंड मा ये की पहली गूंज।

0: ये गीतन कनके हमारा दाना सयणों जवानों और बच्चों का मन मा आजादी की अलग जगह।
1: लोग देश की आजादी की लड़ाई लड़ना चाहे वे टाइम पर है लोग के जोश का दगड़।
0: लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर का निदेशक श्री गणेश कुक्षाल गणी।
1: आजादी को भाव उनका मन में उन्हीं छाए जन देश की मुख्य धारक में आंदोलनकारियों का भीतर रहे हो। जब वंदे मातरम की ई धारत है बगिया 150 साल वेगिन 150 साल बाद आज भी फिर वंदे मातरम वही भाव का दगड़ हमारा हृदय में स्थापित है। जय भाव का दगड़ अपना रचना काल में रहे होलो और याने यू हमारे देशभक्ति को मूल मंत्र च ऐसे हम देशभक्ति का प्रति अपुत हैं और अपनी संतति थे जोड़नों काम कर रहे हैं।
0: 19वीं शताब्दी को भारत अंग्रेजी शासन को दमन और भारतीय समाज का भीतर मठ मटके की आकार लींद राष्ट्रीय चेतना और इन माहौल में बंगाल का महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ना लेख एक गीत

0: जो आणवला वक्तमा स्वतन्त्रता आन्दोलनको सबसे बडो सांस्कृतिक हतियार बन्यो।
1: वन्दे मातरम यह केवल एक राष्ट्रगीत नहीं बल्कि भारत माता प्रति प्रेम सम्मान कृतज्ञता और समर्पणक अमर
0: शिक्षाविद श्रीमती राखी पांडे
1: 150 वर्ष पूर्व महान साहित्यकार द्वारा की गये परंतु वचन बादल एक प्रासंगिकता और प्रेरणादायक शक्ति आज ल उत्कल सशक्त छ। स्वतंत्रता संग्रामक दौरान यह राष्ट्रगीतल लाखों देशवासियों का एकजुट करो और उनमें राष्ट्र प्रेमक भावना जागृत करे, चाहे वो आंदोलन भय या जन आंदोलन। आंदोलनकारियों द्वारा लय गीतक माध्यम से अपन संस्कृति और अपन अधिकारन और अपन सपनों भारत लीजी प्रेम प्रकट करेगो। यह गीत संघर्ष साहस और सामूहिक संकल्पक प्रेरणा स्रोत पड़ी।
0: सन 1875 में रचित वंदे मातरम ते बाद में उनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल करे गया। यु गीत मातृभूमि की देवी स्वरूप की वंदना छे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में पहलीदा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ना ये ते सार्वजनिक मंच से गए।

0: सन 1905 अंग्रेज सरकार ना बंगाल विभाजन की घोषणा कर सारा देश में आंदोलनों की लहर उठ गया। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। आजादी का मतवाला विदेशी सामान की होली जगाण बैठ गई और हर आंदोलन, हर जलूस, हर सभा को सबसे बड़ो घोषवर्ण वंदे मातरम। इतिहासकार डॉक्टर योगेश धस्माना।
1: भारत वर्ष में जो अत्याचार होना था आम जनता पर, भारतवर्ष की जनता जो अभी सुप्त अवस्था में पड़ी छे, ये गीत का माध्यम से बंकिम चंद्र चटर्जी ने पुनर्जागरण का साथ साथ ये गीत का जरिया देश का अंदर जब सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने को एक मौका दे, वख्य वयु गीत अग्नि चल की राष्ट्रीय आंदोलन को एक मुख्य गीत बन गए छो। और ये गीत न इद गई ना, ये गीतन राष्ट्र से भैर भी जो बीबीसी को एक सर्वे छ, वे माई बताएगे कि वे टाइम पर यु विश्व का 10 भाषाओं को लोकप्रिय गीत मा छो ये गीत। और 65 सेकंड मा ये गीत को जो वाचन हो, तो जो 150वीं वर्ष की जयंती हमें बड़ी मनाना चाह, ये कुछ लक्ष्य योच कि हम फिर भारत का वे अतीत का गौरव से नई पीढ़ी थे परिचित करा।
0: ब्रिटिश सरकार ते ये गीत ते लेके डर लगन बैठ गया। उनते लगन बैठ गया कि यु गीत भारतीयों ते विद्रोह खुणी प्रेरित कनुच। कई शहरों में ये पर रोक लगाने की कोशिश भी हुई, लेकिन तब तक यु गीत लोगों का दिलों की धड़कन बढ़ गया जाए।
2: भारत का स्वाधीनता संग्राम में देवभूमि उत्तराखंड को योगदान अत्यंत गौरवशाली और अद्वितीय रहे। भौगोलिक रूप से दुर्गम होने का बावजूद ये पर्वतीय अंचल में राष्ट्रभक्ति की अलग पुरजोर।
0: वरिष्ठ पत्रकार श्री जय सिंह रावत।
2: वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य प्रेरणा स्रोत और महामंत्र बने तो उत्तराखंड का अमर सेनानियों ने ये उद्घोष है हिमालय की घाटियों तक गुंजायमान कर दी। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत 1857 की गदर का लगभग शुरू हुई है। कालू मैरा पहली क्रांतिवीर माने जाना उत्तराखंड में, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में वंदे मातरम यक्का जन जन आंदोलनों की रोगों में बौगण बैठी। कुमाऊं और गढ़वाल का विभिन्न इलाकों में ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों का, कानूनों और विशेषकर कुली बेरोजगार प्रथान का खिलाफ पहाड़ का लोग काफी आंदोलित हुए। वर्ष 1921 में बागेश्वर में उत्तरायणी कोथिंग मेलो, ये अवसर पर बद्रीनाथ पांडे का नेतृत्व में जब हजारों आंदोलनकारियों ने कुली बेगार का रजिस्टर सरयू नदी में बगाया, तो पूरा वातावरण में वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा गुंजायमान हो गया था। एक बाद अल्मोड़ा महास्थापित डिबेटिंग क्लब और कुमाऊं परिषद की बैठकों से लेकर गढ़वाल सभा का सम्मेलनों तक पूर्ण विमर्श का शुरुआत और समापन पर वंदे मातरम उगान आवश्यक वेगी छो।
0: उत्तराखंड में पहली दा यु गीत कब गूंज ठीक ठीक बताण मुश्किल छ, लेकिन वही जमाना अखबार और पत्र पत्रिकाओं से इतगा अंदाजा जरूर मिलद कि 20वीं सदी का आरंभिक दौर मा ये की शुरुआत हुई की छे। अल्मोड़ा जैथे कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी बोले जात, राष्ट्रवादी गतिविधियों को प्रमुख केंद्र रहे।
3: कुमाऊं में राष्ट्रीय आंदोलन दौर में राजनीतिक सभा, जलूस और जनसभा में वंदे मातरम के एक प्रकार नियमित रूपल सुनन में आ। धीरे धीरे योगी जनमानसक बीच में राष्ट्रीय अस्मिता और स्वतंत्रता प्राप्त।
0: दून पुस्तकालय का कार्यक्रम अधिकारी श्री चंद्रशेखर तिवारी।
3: 1921 असहयोग आंदोलन और 1930 नमक सत्याग्रह वक्त अनेक जाग में नानतीन युवा और स्वयं सेवक वंदे मातरम गाने लीजी जुलूस निकालछी। अंग्रेज सरकार ले कई बार यश गीतन के और इनर उद्घोष में रोक लगाने कोशिश ले करी, पर यह लोकप्रियता बढ़ते रहे। कुमाऊं प्रसिद्ध समाचार पत्र शक्ति ले राष्ट्रीय चेतना फैलून में अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभा और वंदे मातरम की भावना जन जन तक पहुंचून में अपन योगदान दे।
0: यू एक ऐतिहासिक तथ्य छ कि कुमाऊं का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिराम त्रिपाठी ना वंदे मातरम को कुमाऊनी मा अनुवाद किया।

0: यो केवल गीत ना यो पहाड को लोको मा स्वाभिमान जगाउनु को मंत्र छ। कुमाऊ मा ही किले गढ़वाल मा भी स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से आकार लिनु छ। देहरादून पौड़ी श्रीनगर और टिहरी मा छात्र संगठन और जनसभाओं को लगातार आयोजन हुन बैठ गए। यख प्रभात फेरियों को आधार गीत ही वंदे मातरम बन गया। सुबेर सुबेर बच्चा और जवान टोली बने की गोमा और कस्बों में जांदा छ और राष्ट्रभक्ति को गीत गांदा छ। गढ़वाल मा जोनू को यो गीत केवल राजनीतिक नारा नहीं छो, यो आत्मसम्मान को प्रतीक भी छो।
1: वंदे मातरमन आज 150 साल पूर करें ई देश खातिर गर्व और सम्मान को विषय छ। ई गीत केवल शब्द समूह नहीं छ बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा, राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा और मातृभूमि प्रति।
0: पत्रकार हरीश कंडवाल मनखी।
1: भारत माता की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि और शक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण वर्णन करियो छ। 150 साल की एक गौरवशाली यात्रा में वंदे मातरम ने अनेक पीढ़ियों तक प्रेरित करी। ये गीत हम अपने देश प्रति कर्तव्य, सम्मान और समर्पण को संदेश दींदू। आधुनिक भारत में भी एक ही प्रासंगिकता उतना ही महत्वपूर्ण छ जितना महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम समय की भगत छे।
2: वंदे मातरम।
0: ये वही दौर छ जब गढ़वाल राइफल्स का सैनिकों में भी राष्ट्र चेतना जागृत छे। देश भर से स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभाव सेना तक पहुंच गया। 1930 में पेशावर कांड का दौरान वीर चंद्र सिंह गढ़वाल दी और उनका दगड़े उन्हें निहत्ता भारतीयों पर गोली चलान से मना कर दे। हालांकि वही घटना को वंदे मातरमक दगड़ कोई भी रिश्ता नहीं छो, लेकिन राष्ट्रवादी चेतना का जय वातावरण में इन साहस जन्मी वे माँ ये गीत को महत्वपूर्ण योगदान छ। टिहरी रियासत जग जनता दोहरी गुलामी झेलनी छे। एक तरफ अंग्रेजी सत्ता और दूसरी तरफ राजशाही को दमन। प्रजामंडल आंदोलन का दौरान विद्यार्थियों ने वंदे मातरम ते प्रतिरोध को गीत का रूप में अपने। टिहरी का बाजारों में, सभाओं में और जुलूसों में यु गीत गुंजन बैठ गए। कई बार रियासत की पुलिस और राष्ट्रवादी नारों और गीतों पर रोक लगाने कोशिश कर, लेकिन गीतों की आवाज लाठी और बेड़ियों से कनके रुक सकत। वंदे मातरम यक जन संघर्ष की ऊर्जा बन गया है। श्री जय सिंह रावत।
3: स्वतंत्रता आंदोलन का दौरान श्रीदेव सुमन, जय आनंद भारती, हरिगोविंद पंत जैसे दूरदर्शी नेता जब भी जेल गया या यातना तो सही, जब भी उत्तराखंड में जन सभा होती है स्वतंत्रता आंदोलन की, तो वंदे मातरम सब आंदोलनकारियों को ऑटो पर अटूट सबल बनकर गूंजत छो। आजादी की लड़ाई में उत्तराखंड न केवल भौतिक बल रणनीतिक आहुति दी है, बल्कि वंदे मातरम का सांस्कृतिक आध्यात्मिक भावना कठिन पर्वतीय जीवन में आत्मसात करी छो। हिमालय की पावन भूमि ने साबित करी कि देश की स्वतंत्रता का वास्ता उनकी निष्ठा और गूंज मुख्य धारा का मैदानी आंदोलन से रत्ती भर भी कम नहीं रही।
0: अब सवाल यो छे कि उत्तराखंड में वंदे मातरम को प्रभाव इतगा गहरो किले छे, किले कि यो गीत प्रकृति थे मां मनत और पहाड़ों को जीवन प्रकृति से जुड़ियो छे। जब गीत मां बोले जान सुजलाम सुफलाम, तो पहाड़ को मन की वे मां अपनी गंगा यमुना देखत, अपना जंगल, अपना खेत, अपना बुग्याल, अपनी हिमचली काठी। ये का कारण ही गीत केवल राष्ट्रवाद को न बल्कि भावनात्मक आस्था बन गया।
4: उत्तराखंड बात करूं तो उत्तराखंड एक सांस्कृतिक विविधता इतु छ, जमे कुमाऊनी, गढ़वाल, जौनसारी, भोटिया, नेपल, थारू, राजी और अन्य समुदाय अपूर्ण अपूर्ण विशिष्ट भाषा, लोक कला, वेशभूषा और परंपरा।
0: श्रीमती राखी पांडे।
4: निवास करनी उत्तराखंड में भले ही उनर पहचान अलग अलग छ, परंतु मातृभूमि प्रति प्रेम उनका एक सूत्र में बांध दिए और वंदे मातरम यह एकताक प्रतीक छ। जैसे अनेक नदी मिलबेर गंगाक निर्माण करनी और अनेक पर्वत श्रृंखलाएं मिलबेर हिमालय भव्यता को बढ़ूनी, वी तरह उत्तराखंडक विविध समुदाय मिलबेर उनर सांस्कृतिक पहचान मिलबेर, जब राष्ट्र प्रेम में वंदे मातरम साथ गुथी जानी, तब उत्तराखंड दिखण लायक है। अतः वंदे मातरम केवल एक गीत है न, बल्कि वो भावना छ जो हमार देशक विविध जनजातियों भाषाओं राज्यों और संस्कृतियों को जोड़नक प्रयास करें। यह वो भावना छ जब बाकी नन ठुल भेद भूले दी जान और हमन का सिर्फ एक चीज याद रू उ हमार माता हमार जन्मभूमि हमार भारत माता।
0: श्री गणेश कोक्षाल गणी।
2: ये बंदे मातरम थे हमारा लोकन ये तरह से महसूस करी चाहे वो गढ़वाल में रहे हो कुमाऊं में रहे हो जौनसार की तरफ रहे हो लोगों बंदे मातरम थे जे को जन्म अपना जन्म स्थान बटे इतगा दूर की लंबी यात्रा करी हमारा लोक में पहुंच उत्तराखंड की धरती में पहुंच उत्तराखंड में बंदे मातरम थे गाना का वास्ता उनकी जो अपनी ढोल छे उनकी जो अपनो मिजाज छे उनको जो अपनी सार तार छे बंदे मातरम थे लेकिन उन अपनी जुबान में बंदे मातरम थे गाने की कोशिश करें बंदे मातरम थे बने कोशिश करें बंदे मातरम का माध्यम से नई पीढ़ी थे उद्वेलित करने की उन थे आंदोलित करने की कोशिश करें और जब उन अपनी जुबान में बंदे मातरम थे गाय थे बंदे मातरम की आराधना करी बंदे मातरम का माध्यम से देश की पूजा करी तो एक अलग तरह को भाव पैदा हुए यान पीढ़ी की पीढ़ी बंदे मातरम का दगर जुड़ गए और आज तभी तो 150 साल बाद भी हम थे इन लगत के बंदे मातरम जान ब्याली बटे शुरू हुए वो और हमारा भीतर उन जीवन हो।
0: सन 1942 महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को आह्वान कर देश भर में अंग्रेजी सत्ता का खिलाफ विद्रोह शुरू हुई है। उत्तराखंड भी इसे अछूत निरह देहरादून नैनीताल अल्मोड़ा और श्रीनगर में छात्रों ने जुलूस निकाले और यूं जुलूसों में वंदे मातरम सबसे प्रमुख उद्घोष है। अंग्रेज सरकार खोने युगीत विद्रोह को प्रतीक बन गया है लेकिन भारतीयों का वास्ता यो स्वतंत्रता को विश्वास है। श्री चंद्रशेखर तिवारी।
5: लोक गायक कवि और जन कवियों ले यो भावना के अपन रचनाओं में अभिव्यक्ति करी और यही संदर्भ में कुमाऊं प्रसिद्ध लोक कवि गौरीदत्त पांडे गोरदाल ले वंदे मातरम पर एक गीत रचो। यो गीतल राष्ट्रीय भावना के कुमाऊनी भाषा में स्वर दिवेर उकु आंदोलन में एक प्रेरणा स्रोत बढ़ा। उ गीत यो प्रकार छू। छीनी ने सकनी कभे सरकार बंदे मातरम हम गरीबन को छो यो गलहार बंदे मातरम हम त वी छो जो कि हुण चै छो हमन ये बखत पर आज कूणा लागी रो छो संसार बंदे मातरम दुर्जनन को मली जली भंगार हूँ छो वी बखत कान में जब पूजन छो झंकार बंदे मातरम जेल में चाखा पिसण ओ भूख ले मरणा बखत वी बखत ले यो कणी करिया प्यार बंदे मातरम मौत का मुख में खड़ा कूणा लगा हथियार थे ठूकी दे ठोठियाड़ में तलवार बंदे मातरम बैद ले नाड़ी देखी मुनले हिले बेर कह दियो यो तो देश भक्ति को बीमार बंदे मातरम होली दिवाली ईद है ले लाड़ी लो छ सौ गुना मानने छ इक्को ही यो त्यार बंदे मातरम छीनी न सकनी कभे सरकार बंदे मातरम।
0: 24 जनवरी 1950 संविधान सभा ने वंदे मातरम थे भारत को राष्ट्रीय गीत को दर्जा दे। संविधान सभा का अध्यक्ष और भारत मा पहली राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोले कि जनगण मन और वंदे मातरम दुयों थे समान सम्मान मिलो और इनके एक युगीत जो कभी अंग्रेजी सत्ता का खिलाफ विद्रोह को स्वर बन आखिर मा स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय पहचान।

राज्य का कई विद्यालयों में ये को सामूहिक गायन हो। नई पीड़ित है बताई जान कि वो केवल गीत नीच बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत।

भले ही अब वक्त बदल गए, लेकिन वंदे मातरम की भावना आज भी वही चली। जब कोई सैनिक सीमा पर खड़ू रहता, जब कोई छात्र तिरंगा लेके निकल, जब कई स्कूल में राष्ट्रगान से पहले यू गीत गूंज, तब लगत यूं चले कांठियों में आज भी वही स्वर गूंजणो छे। वंदे मातरम, वंदे मातरम।

0: तो दगड़ियों, अभी आप ग्राम जगत की विशेष प्रस्तुति सुनना चाह वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर, यू छो विशेष गढ़वाली रूपक भारत माँ की आत्मा को स्वर वंदे मातरम। आलेख छो श्री किरण कुमार शर्मा को और प्रस्तुत सहायक था रॉबिन कर्माकर और प्रस्तुतकर्ता था विनय ध्यानी। तो कार्यक्रम तय आगने बढ़ोना और सुनना एक सुंदर सी गढ़वाली गीत दीपा चौहान का स्वरमा, लेकिन वैसे पहले कुछ रंत रैबार।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दगड़ियों अभी आप सुनना छा गढ़वाल गीत स्वर छ दीपा चौहान को। और अब घड़ी की सुई बतौनी छ कि बकत होनी छ उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को, तो लियावा कुछ ही देर में आप सुनना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन का कार्य जारी। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने रिस्पना नदी में चल रहे सफाई एवं पुनरुद्वार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए हरिद्वार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर चमोली एवं चंपावत में रन फॉर योगा के तहत क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि SIR के तहत मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने के लिए घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं। डॉ जोगदंडे ने बताया कि अब तक प्रदेश के लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। 6 जिलों में प्रपत्र वितरण का कार्य 99% तक पूरा हो चुका है। वहीं अन्य जिलों में भी अभियान तेजी से चल रहा है और अगले 1-2 दिनों में वितरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
7: जो प्रगति प्राप्त हुआ है 17 जून तक हमारे इस अभियान में 97% हमारे मतदाताओं को हम गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने में सफल हो पाए हैं। इसमें 6 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पर 99% से अधिक प्रगति प्राप्त किया गया है गणना प्रपत्र के वितरण कार्यक्रम में। इन जनपदों में रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत ये जनपद शामिल है। सबसे कम प्रगति वाले जनपदों में भी अच्छी प्रगति अभी तक दर्ज किया गया है। देहरादून जनपद में 94% है और उसके बाद नैनीताल जनपद में 95% प्रगति एनुमेरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूशन कार्य में किया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 1-2 दिवस के भीतर जो भी शेष गन्ना प्रपत्र वितरण का कार्य होगा वो भी पूरा कर लिया जाएगा। जितने भी गन्ना प्रपत्र सही विवरण के साथ भरकर हस्ताक्षर सहित प्राप्त हो जाएंगे उन सभी गन्ना प्रपत्रों का डिजिटेशन कार्य पूर्ण किया जाएगा, उसको BLO ऐप पर अपलोड किया जाएगा।
6: डॉक्टर जोगदंडे ने कहा कि मतदाताओं से प्राप्त प्रपत्रों का सत्यापन कर उन्हें निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति को दूर किया जा सके। उन्होंने सभी मतदाताओं से समय पर अपने गणना प्रपत्र भरकर संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध कराने की अपील की है। राजधानी देहरादून स्थित रिस्पना को नया जीवन देने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त मुहिम तेज कर दी है। इसी के मद्देनजर आज जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने राजीव नगर क्षेत्र से रिस्पना नदी में चल रहे सफाई एवं पुनरुद्धार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर सौरभ थपलियाल तथा मुख्य नगर आयुक्त आलोर कुमार पांडेय भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सफाई कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून से पूर्व रिस्पना नदी की व्यापक सफाई सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, जिससे वर्षा काल में जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनी रहे तथा नदी संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिल सके।
7: इस संबंध में मैं अभी नगर निगम का बहुत थैंकफुल हूं कि उन्होंने आज 12 जेसीबीज और लगभग 10-15 डंपर्स हमारे काम कर रहे हैं। तो मेरी और जो हमारे आयुक्त महोदय हैं उनके साथ में एक डिस्कशन हुआ था और हम लोगों ने प्लान किया था कि कंबाइंड एफर्ट कन्वर्जेंस के थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर पालिका या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा और इसमें जो नमामि गंगे की हमारी जो जिला गंगा स्वच्छता समिति होती है उसमें भी इन सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा कि कौन से एरिया में गार्बेज की डंपिंग हो रही है या उन्हें कैसे ट्रीट किया जाना है या कई सारे जो हमारे बिना ट्रीट किए हुए नाले इसमें जो गिरेंगे या ड्रेन्स आ रहे हैं उन्हें भी कैसे ट्रीट किया जाना है। प्लस साथ ही इस रिवर के रिजुविनेशन को लेके हम लोग एम्बिशियस तरीके से ट्राई करेंगे कि इसे वापस से जो एक पूर्व में भी इस तरीके का जो अभियान किया गया था तो उसे बेटर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ग्राउंड पे और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव किया जा सकता है।
6: उन्होंने कहा कि रिस्पना नदी के पुनरुद्धार के लिए दीर्घकालिक एवं व्यवहारिक कार्य योजना तैयार कर चरणबद्ध ढंग से कार्य किया जाएगा।
8: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
6: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेश भर में योग के उपलक्ष्य पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में चमोली और चंपावत जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास जन जागरूकता कार्यक्रमों के साथ आज रन फॉर योगा कार्यक्रम के तहत क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ में स्कूली बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। चमोली जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में आयोजित दौड़ को पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए निरोग रहना आवश्यक है, निरोग रहने के लिए योग जरूरी है।
9: योग सप्ताह के अवसर पर रणपुर योगा कार्यक्रम का जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम खेल विभाग के सहयोग से किया गया और हमारे सीनियर सिटीजन से लेके छोटे छोटे 7-8 साल के बच्चे भी इस दौड़ में दौड़े और उनके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर दो बालिकाओं के द्वारा योग का भी बहुत अच्छा यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया। एक संदेश पूरे जनपद के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, चमोली से जो स्वस्थ रहने के लिए, योग को अपनाने के लिए, खेल को अपनाने के लिए जो किया गया उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
6: जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉ. श्रवण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि जनपद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए 1 जून से जगह जगह योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उधर चंपावत में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखंड तथा जिला प्रशासन चंपावत के

0: पाठ किए गए थे और जिसको बाबा रामदेव जी ने आगे बढ़ाया है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी क्रम में आज हमारा आदर्श जनपद चंपावत में पुलिस लाइन से श्री गुज्जू के इस मैदान तक एक मैराथन दौड़ का एक आयोजन किया गया था जिसको रन फॉर योगा नाम दिया गया है। तो निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि जो योगा है वो तीन प्रकार के योग की बात की गई है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। योग का मतलब होता है प्लस एडिशन, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे भक्ति कर रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं या फिर हम कर्मा कर रहे हैं, दैट इज विटनेसिंग द गॉड हेड, यानी कि ईश्वर को जोड़ते हुए यदि हम कर्म करते हैं तो उसी को योग कहा गया, योग कर्मसु कौशलम।
1: हरिद्वार जिले में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी एवं विकास परक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से आज से विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का आयोजन आगामी 20 जून तक किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथि के अनुसार शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक स्थल पर नोडल एवं सहायक अधिकारियों की तैनाती कर कार्यक्रमों का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से किए जाने पर जोर दिया। साथ ही जिले के सार्वजनिक स्थलों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं विकासखंड कार्यालयों सहित प्रमुख स्थानों पर व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने को कहा। इन शिविरों में आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी, पंजीकरण एवं लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर तक यानी 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपये के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपये से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपये की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन का कार्य जारी। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने रिस्पना नदी में चल रहे सफाई एवं पुनरुद्धार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए हरिद्वार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिविर आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चमोली एवं चंपावत में रन फॉर योगा के तहत क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर आप सभीों को ग्राम जगत कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत छे। मैं छूँ आपको दगड़िया जयप्रकाश मवार और अब चलना जौनसार का छोड़ और सुनाना आप एक सुंदर से जौनसारी गीत स्वर्च महेंद्र सिंह चौहान को।

तो दगड़ियों अभी आप सुनना छा जौनसारी गीत स्वर छ महेंद्र सिंह चौहान को। और अब कार्यक्रम तय बटों को वक्त वणु छ, लेकिन वैसे पहले जांदू जांदू एक गढ़वाली गीत और सुनना स्वर छ प्रेरणा भंडारी को।

दगड़ियों अभी आप सुनना था गढ़वाली गीत स्वर छौ प्रेरणा भंडारी को। और अब ये गीत का दगड़ा ही ग्राम जगत कार्यक्रम तय यखिमो संपन्न कंद की। जयप्रकाश पवार ते आज्ञा दावा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। समय हो गया है गढ़वाली प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वाली प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी आशना कंडियाल नेगी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में SIR अभियान का अंतर्गत गणना प्रपत्रों को वितरण और सत्यापन को कार्य तेजी से जारी। लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचे। देहरादून में रिस्पना नदी का पुनरुत्थान और सफाई अभियान का तहत पिछला 3 महीना बटे नदी में लगभग 17,000 मीट्रिक टन कूड़ा हटाई गये। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावतन जल संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन में जन सहयोग पर जोर दे और हरिद्वार जिला में सरकार की योजनाओं को लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य से 20 जून तक जन कल्याणकारी शिविरों को आयोजन करे जाणु छ। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान का अंतर्गत गणना प्रपत्रों का विवरण और सत्यापन का कार्य तेजी से चलणु छ। सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि SIR का अंतर्गत मतदाता सूचित है अधिक शुद्ध बनाण खूण घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करे जाना चिन। डॉ. जोगदंडे ने बताया कि अब तक प्रदेश का लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके छे। 6 जिलों में प्रपत्र वितरण कार्य 99% पूरा हो चुके हैं, वकी अन्य जिलों में भी अभियान तेजी से चलाए जाना चिन। आने वाला 1-2 दिनों में विवरण कार्य पूरा करे जाला।
2: अभी तक का जो प्रगति प्राप्त हुआ है 17 जून तक हमारे इस अभियान में 97% हमारे मतदाताओं को हम गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने में सफल हो पाए हैं। इसमें 6 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पर 99% से अधिक प्रगति प्राप्त किया गया है गणना प्रपत्र के वितरण कार्यक्रम में। इन जनपदों में रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत ये जनपद शामिल है। सबसे कम प्रगति वाले जनपदों में भी अच्छी प्रगति अभी तक दर्ज किया गया है। देहरादून जनपद में 94% है और उसके बाद नैनीताल जनपद में 95% प्रगति एनुमेरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूशन कार्य में किया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 1-2 दिवस के भीतर जो भी शेष गन्ना प्रपत्र वितरण का कार्य होगा वो भी पूरा कर लिया जाएगा। जितने भी गन्ना प्रपत्र सही विवरण के साथ भरकर हस्ताक्षर सहित प्राप्त हो जाएंगे उन सभी गन्ना प्रपत्रों का डिजिटेशन कार्य पूर्ण किया जाएगा, उसको BLO ऐप पर अपलोड किया जाएगा।
1: डॉक्टर जोगदंडे ने बोली कि मतदाताओं से प्राप्त प्रपत्रों को सत्यापन कर उन्हें निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किए जालो, जहाँ से मतदाता सूची में कै भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति है दूर करे जा सको। उन सभी मतदाताओं बटे बगत पर अपना गणना प्रपत्र भोरी कर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी थे उपलब्ध कराने की अपील कह रही। ये बीच चमोली जिला में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR का अंतर्गत 3 मतदाता मतदान केंद्रों पर गणना प्रपत्रों का 100% वितरण और डिजिटाइजेशन कार्य मात्र 8 दिनों में पूरा कर लिए गए। जिला प्रशासन ने ये थे जन सहयोग और BLO की मेहनत को परिणाम बताई। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और बूथ लेवल अधिकारियों की मेहनत बटे ये उपलब्धि हासिल हुई। विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ का बूथ संख्या 133 झींझी और 138 पाणा तथा विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग का बूथ संख्या 38 कोलीमा गणना प्रपत्रों का वितरण और डिजिटाइजेशन 100% पूरा कर लिए गए। जिला अधिकारी ने संबंधित BLO और सहयोग करण वाला मतदाताओं थे बधाई देंदा वे बोले कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने को मुख्य प्रयास है। उन सभी मतदाताओं से सहयोग बनाए रखने और अन्य BLO थे भी अभियान में तेजी लाने का निर्देश दें। देहरादून में रिस्पना नदी का पुनरुत्थान और सफाई अभियान थे जिला प्रशासन और नगर निगम तेज करयाली। बस के आल से पहले नदी थे स्वच्छ और अविरल बनाण खूण युद्ध स्तर पर अभियान चलाई जाना छिन। एक कड़ी में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहानन आज महापौर सौरभ थपलियाल और मुख्य नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे का दगड़ी राजीव नगर क्षेत्र में रिस्पना नदी पर चलना सफाई कार्य को निरीक्षण कह रही। उन मौका पर सफाई अभियान की प्रगति को जायजा लेंदा वे आवश्यक दिशा निर्देश देन। जिलाधिकारी ने बोली कि बसग्याल से पूर्व रिस्पना नदी की व्यापक सफाई प्रशासन की प्राथमिकता छ, ताकि जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनी रहो और नदी संरक्षण का प्रयासों थे मजबूती मिलू।
3: सो
2: संबंध में हमारा एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान्स बनेंगे कि विजिबल चेंजेस कौन कौन से लाए जाने हैं। मॉनसून से पहले के जो हमारी प्री मॉनसून तैयारियां हैं उसमें हमारे 12 से 15 जो ब्रिजेज हैं वो PWD को हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें फंड्स दे दिए। सिमिलरली इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी फंड्स दिए गए ताकि रिवर के चैनलाइजेशन के वर्क को करके मिटिगेशन किया जा सके। और अभी जो नगर निगम के एफर्ट्स हैं वो भी इसी लाइन पे हैं कि बिफोर मॉनसून हम बस्तियों को और अपने लो लाइंग एरियाज को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं और कैसे गार्बेज जो अंदर पड़ा हुआ है उसे निकाल के रिवर को क्लीन कर पाते हैं।
1: ध्यान देने वाली बात है कि नगर निगम द्वारा रिस्पना तहत स्वच्छ बनाण खुण मार्च महीना बटे विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाणु च। यहाँ का तहत अब तक लगभग 17,000 मीट्रिक टन कूड़ा हटाई जा चुकी छ। प्रशासन ने स्पष्ट कह रही थी कि नदी थे कूड़ा घर नहीं बनाए जालू और नदी में गिरने वाला अन उपचारित नालों का उपचार की दिशा में भी प्रभावी कार्यवाही करे जाली।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणु छ। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: पौड़ी जिला का विकास खंड पाबू का खुड़ेश्वर मैदान में आज जिला स्तरीय जल उत्सव 2026 को शुभारंभ करेंगे। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुनोवेशन अथॉरिटी सारा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को उद्घाटन कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावतन करी। ये अवसर पर डॉ. रावतन बोली कि जल संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन में जन भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन बोली कि प्रदेश का पारंपरिक जल स्रोतों नदियों गाड़गदेरा नौला और धारा राज्य की अमूल्य प्राकृतिक संपदा है ज्यां तहत संरक्षण बगत की आवश्यकता च। ओन बोली की बदलता जलवायु परिस्थितियों और बढ़ती जल आवश्यकताओं थे दिग्दावे जल स्रोतों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन खुण राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं पर कार्य करने च। साथ ही स्थानीय समुदायों महिला समूह और युवाओं की सहभागिता बटे यु प्रयासों थे और अधिक प्रभावी बनाए जा सकदू च। ये दौरान कैबिनेट मंत्री लुखों से स्वच्छता अपनाण खुण ज्यादा से ज्यादा डाला बोटा लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपनो योगदान देने को आह्वान करी। हरिद्वार जिला में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य से आज बटे जन कल्याणकारी शिविर आयोजित करे जाना छिन जो 20 जून तक लगाए जाला। यूं शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाओं और योजनाओं की जानकारी एक ही छत का तौला उपलब्ध होली। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित संबंधित अधिकारियों तहत शिविर को सफल आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दें। उन बोली कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यूं शिविरों को व्यापक प्रचार प्रसार बिंडी लुखों की भागीदारी सुनिश्चित करे जाओ। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाला जख विभिन्न सरकारी योजनाओं का तहत पात्र लाभार्थियों को पंजीकरण करे जोलू और उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान करे जाला। जिलाधिकारी अधिकारियों थे लाभार्थियों की सुविधाओं को विशेष ध्यान रखदा तथा शिविरों की प्रगति की नियमित रिपोर्ट उपलब्ध कराने को निर्देश दिया छिन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नैनीताल और चमोली जिला में योग थे लेकर उत्सुकता दिखने को मिलने छे। आयुष विभाग द्वारा दुयो जिलों में रन फॉर योगा कार्यक्रम आयोजित करेंगे ज्यामा स्कूली छात्र छात्राओं युवाओं बुजुर्गों महिलाओं एनसीसी कैडेट्स और आम नागरिकों बढ़ चढ़ी कर भाग ले। नैनीताल का मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम को शुभारंभ मुख्य अतिथि मोहन पाठकन हरी झंडी दिखाकर कैरी। वहीं चमोली का स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में आयोजित क्रॉस कंट्री दौड़ को शुभारंभ पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार कैरी। ये अवसर पर छात्रों द्वारा योग प्रदर्शन भी करेंगे और प्रतिभागियों योग का प्रति जागरूकता और फिट इंडिया को संदेश दे।
4: हम आलिया हैं, हम योगा दिवस के लिए यहाँ से दौड़े थे और यहाँ से हम तिकोनिया तक दौड़े थे और फिर हमें प्राइज भी मिला। हम ये संकेत दे रहे थे कि योगा फिटनेस हमें करना चाहिए, फिट रहना चाहिए अपनी बॉडी में। आज हम यहाँ दौड़े योग दिवस पर, योगा हम सबको करना चाहिए। स्टेडियम की तरफ से तिकोनिया तक लेके गए, इसमें हमने रनिंग करी और योग सबको करना चाहिए, आपका बॉडी फिट रहती है, स्वस्थ रहती है।
1: ध्यान देने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर पर राज्य का विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम आयोजित करे जाना छिन। यहाँ का द्वारा लोगों से ज्यादा संख्या में योग से जुड़ने की अपील करे जानी छ। अब अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। प्रदेश में SIR अभियान का तहत गणना प्रपत्र वितरण और सत्यापन को कार्य तेजी से जारी। लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचे। देहरादून में रिस्पना नदी का पुनरुत्थान और सफाई अभियान का तहत पिछला 3 महीना बटे नदी में लगभग 17,000 मीट्रिक टन कूड़ा हटाए गए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावतन जल संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन में जन सहयोग पर जोर दे और हरिद्वार जिला में सरकार की योजनाओं को लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य से 20 जून तक जन कल्याणकारी शिविरों को आयोजन करे जाणु छे। याके तगड़ी ही गढ़वली प्रादेशिक समाचारों को अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार किसान भाइयों बहनों, FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न होंगे। और आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत करती है आपकी साथी सुरुचि वर्मा। और आप सभी खेती किसानी का बहुत ध्यान भी रख रहे होंगे। साथियों, मानसून का मौसम भी आने वाला है। बारिश हम किसानों के लिए खुशहाली लेकर आती है, लेकिन अगर खेतों की उचित तैयारी ना की जाए तो यही बारिश मिट्टी के कटाव, जल भराव और पोषक तत्वों की हानि का कारण भी बन सकती है। इसलिए बरसात से पहले मेढ़ों का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। मेढ़े खेत की सुरक्षा दीवार की तरह होती है। साथियों, ये वर्षा के पानी को नियंत्रित करती है, मिट्टी के बहाव को रोकती है और खेत में नमी बनाए रखने में मदद करती है। बरसात शुरू होती है उससे पहले आपको मेढ़ों का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले खेत की चारों ओर बनी मेढ़ों की जांच आप करें। अगर कहीं दरारें, टूट फूट या कटाव दिखाई दे तो उन्हें तुरंत मिट्टी डालकर आप मजबूत करें। कमजोर मेढ़ों को ऊंचा और चौड़ा बनाएं ताकि तेज बारिश का जो पानी है उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। और साथियों, मेढ़ों पर उगी हुई अनावश्यक झाड़ियां और खरपतवारों को आप हटा दें। हालांकि कुछ उपयोगी घासें जैसे दूब या अन्य स्थानीय घासें मेढ़ों पर लगाई जा सकती है। इनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांधे रखती है और कटाव को कम करती है। किसान साथियों, मेढ़ों पर फलदार या चारा देने वाले पौधे भी लगाए जा सकते हैं। इससे मेढ़ों का संरक्षण तो होता ही है।

साथ ही अतिरिक्त आय का स्रोत भी बनता है। लेकिन ध्यान रखें कि बड़े पेड़ ऐसे ना लगाएं जिनकी जड़ें मेड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हो। तो इस तरह से आप मेड़ों का प्रबंधन कर सकते हैं। और अभी बातें और भी करेंगे आपसे कार्यक्रम में, पर थोड़ा मनोरंजन भी कर लेते हैं और सुनते हैं ये सुंदर सी रागिनी।

0: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब
2: जागो, ग्राहक जागो।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि बरसात से पहले आप मेड़ों का प्रबंधन कैसे करें और ये कितना ज़रूरी है, इस विषय पर हम बात कर रहे थे। और अगर साथियों खेत ढलान वाले क्षेत्र में है तो मेड़ों को विशेष रूप से मजबूत बनाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार पानी की निकासी के लिए उचित नालियों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इससे अतिरिक्त पानी खेत से सुरक्षित बाहर निकल जाता है और फसल को जल भराव से हम बचा सकते हैं। तो साथियों, बरसात से पहले मेढ़ों की मरम्मत पर किया गया थोड़ी सी मेहनत भविष्य में मिट्टी और फसल के बड़े नुकसान को बचा सकता है। मजबूत मेढ़े वर्षा जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे खेत में नमी लंबे समय तक बनी रहती है और सिंचाई की आवश्यकता भी कम हो जाती है। तो किसान साथियों, मॉनसून के आगमन से पहले अपने खेतों की मेढ़ों का निरीक्षण आप जरूर करें, उनकी मरम्मत करें और उन्हें मजबूत बनाएं। ये छोटा सा प्रयास आपकी फसल की सुरक्षा और बेहतर उत्पादन का आधार बन सकता है। और अब साथियों, हमेशा की तरह हम आपके लिए एक भेंटवार्ता भी लाए हैं, जिसका विषय है प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता। इस विषय पर डॉक्टर शरद पांडे से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चमोली। तो आइए साथियों, सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
5: नमस्कार किसान साथियों, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शरद पांडे। और डॉक्टर साहब से जो आज हमारी बातचीत का विषय है, वो विषय रहने वाला है प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता। खेती किसानी की बात करें या पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम देखें, तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ अगर हम तालमेल बिठाकर काम करते हैं तो ये हमारे लिए भी फायदेमंद है और प्रकृति का जो संतुलन है इससे वो भी बना रहेगा। तो कैसे प्राकृतिक खेती की जा सकती है, इस विषय पर हम जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
6: नमस्कार विकास जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए।
5: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी बातचीत का आज विषय है प्राकृतिक खेती, तो सबसे पहले इसी को जानते हैं कि ये प्राकृतिक खेती होती क्या है और इसको प्राकृतिक क्यों कहा गया है।
6: देखिए विकास जी, अगर हम खेती की बात करें
5: जी,
6: तो सबसे पहले खेती का हमारा उद्देश्य क्या है। खेती जो है, हमारे भारत जो है वो एक किसान प्रधान, कृषि प्रधान देश है
5: जी।
6: और खेती का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो जो भी खाद्यान्न हमारा उत्पादन हो रहा है उसको अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाना
5: जी।
6: और यही नहीं कि खाद्यान्न को बढ़ाना, उसको एक ऐसा पोषक तत्वों से भरपूर खाद्यान्न उगाना जिससे कि हमारी जो जीवन शैली है वो भी बेहतर हो सके। अब खेती की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम हरित क्रांति की बात करें जिसमें खाद्यान्न उत्पादन भारत का बहुत बढ़ा
5: जी,
6: उसमें मूलतः जो हमारी किस्में, अच्छी किस्में यूज करी गई और रसायन भी यूज किया गया। तो अगर हम खेती की बात करें, तीन तरीके की खेती हमारे दिमाग में आती है। एक होती है पारंपरिक खेती
5: जी,
6: जिसमें हम अच्छे बीज यूज कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम रसायन का भी उतना ही ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं
5: जी।
6: अब दूसरा एक शब्द आ रहा है आजकल, जैविक खेती। जैविक खेती में हम रसायनों का जो यूज है वो कम कर रहे हैं। अब इसी के बाद एक क्रम में आ रहा है एक शब्द जिसको हम कह रहे हैं प्राकृतिक खेती
5: जी।
6: प्राकृतिक जैसे वर्ड जो शब्द है, यह है प्रकृति से रिलेटेड। तो प्रकृति की चीजों को ही हम जब यूज कर रहे हैं अपनी खेती में, और इसको हम जीरो बजट भी कहते हैं, जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें किसानों की जो लागत है वो बहुत कम हो जाती है। जो किसान के खेतों में, मान लीजिए उसके पास गाय है
5: जी,
6: तो गाय से जो हमारा गोबर मिल रहा है, गौमूत्र मिल रहा है उससे मिला के जो हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं, पेस्टिसाइड बना रहे हैं, मतलब जो किसान के रिसोर्सेज हैं उसके फार्म पे उन्हीं को अगर हम यूज करके खेती कर रहे हैं और उससे हमें लाभ मिल रहा है, तो इस तरह की खेती को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं।
5: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि प्रकृति में जो भी चीजें उपलब्ध हैं, जो हमारे आसपास मौजूद हैं, उससे हम इस खेती को करते हैं। किसान शुरुआत अगर कर रहा है प्राकृतिक खेती वो करना चाहता है, तो किस किस चीज की उसको जरूरत पड़ने वाली है?
6: किसान अगर प्राकृतिक खेती की तरफ जाता है तो सबसे पहले तो उसको अपना मन बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में ऐसा होगा कि हमने अपनी जो भारत ये मिट्टी है
5: जी,
6: में हमने इतने रसायनों का यूज कर दिया है कि अगर हम एकदम से प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि किसानों को वर्षों में जो लागत है वो, जो उसका उत्पादन है वो कम मिले। तो पहले तो हमें मन में ठानना है कि अगर हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उससे जो भी लाभ हमें मिलेगा भले ही कम मिले लेकिन वो हमारे मानव जीवन के लिए अच्छा होगा
5: जी।
6: और दूसरा, प्राकृतिक खेती में उसको बिल्कुल ये रसायन की तरफ तो जाना ही नहीं है। मार्केट में जितने भी रासायनिक चीजें मिल रही हैं, पेस्टिसाइड मिल रहे हैं, कीटनाशक मिल रहे हैं, उनसे बचना है
5: जी।
6: क्योंकि देखिए, जो कोई भी चीज जो चेंज आता है, ये एक चेंज है, ये एक बदलाव है
5: जी,
6: वो समय लेता है
5: बिल्कुल,
6: लेकिन उसके परिणाम अच्छे होते हैं। तो किसानों को अगर प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है तो उसको रसायनों का प्रयोग कम से कम करना है। शुरुआत में जो भी उसको हानि हो सकती है उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है
5: जी।
6: और जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं जिनको हम जो है हिस्ट्री में आप पढ़ लेंगे अगर, तो अगर हम जिसे आजकल कहते हैं इंडिजिनस नॉलेज, पुरानी चीजें जो हमारे दादा परदादा किया करते थे, चाहे वो खेती हो, चाहे वो बीज को रख रखाव हो
5: जी,
6: हमें उन चीजों पे दोबारा वापस जाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए किसानों को खेतों में उसके पास गाय भी है
5: जी,
6: तो इसमें देखिए प्राकृतिक खेती में अगर आप कोई भी इसके जो कंपोनेंट्स आगे पढ़ेंगे उसमें दो चीजें मूल है, एक है गाय का गोबर और दूसरा है गौमूत्र।
5: अच्छा,
6: चाहे हम बीजामृत बनाए जिसमें हम बीजों का उपचार करके उसको बोते हैं
5: जी,
6: चाहे हम जीवामृत बनाए जिसको हम पानी के साथ खेतों में डालते हैं, इन सब चीजों में गाय का गोबर और गौमूत्र विशेषता यूज हो रहे हैं। उसका कारण है, गौमूत्र की अगर साइंटिफिक स्टडी बताती है कि गौमूत्र में कम से कम 20 से 25 ऐसे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, जो हमारी मिट्टी में जाके मिट्टी की शक्ति को बढ़ाते हैं।
5: अच्छा,
6: अब मिट्टी की शक्ति अगर बढ़ेगी तो
5: उत्पादन अच्छा मिलने वाला, मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होगा,
6: मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होगा
5: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि रसायनों की तरफ इस प्राकृतिक खेती में हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है, लेकिन भविष्य में अगर कभी हमारे खेत में कोई रोग लग गया फसल में या कोई कीट आ गया, तो उस स्थिति में हमारे किसानों को क्या करना होगा?
6: उस स्थिति में भी रसायनों का और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग होगा
5: जी।
6: और उसका जो विकल्प है, उसका विकल्प भी है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं प्राकृतिक
5: जी,
6: जिससे एक जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं नीम। नीम एक ऐसा वृक्ष है जो हमें कई बीमारियों से बचाता है
5: जी।
6: तो एक ऐसा ही इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक बनाया जा रहा है जिसको हम नीमास्त्र,
5: अच्छा,
6: जिसमें हम नीम की पत्तियों को यूज करते हैं और उससे हम कीटनाशक बना रहे हैं
5: जी।
6: इसी तरीके से एक होता है अग्निअस्त्र, एक होता है ब्रह्मास्त्र, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारी मिर्च है, लहसुन है, इनको उबाल के और ये जो गौमूत्र है इनके साथ मिला के
5: जी जी
6: हम प्राकृतिक कीटनाशक बना रहे हैं।
5: अच्छा, तो ये काम करेगा?
6: ये काम करेगा क्योंकि देखिए, पहले भी मैंने कहा कि कोई भी बदलाव समय लेगा
5: जी,
6: और मनुष्य की सहनशीलता ही है जो प्राकृतिक खेती को सफल बनाएगी।
5: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये नीम अस्त्र, अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं, कितने समय में किसानों को दोबारा से पहले जैसा ही उत्पादन मिलने लगेगा?
6: देखिए, किसान अगर रासायनिक खेती कर रहा था, पारंपरिक खेती कर रहा था
5: जी,
6: और वो स्विच करेगा अपना जैविक खेती में या प्राकृतिक खेती में, तो शुरुआत में हो सकता है कि 5 से 6 साल तक उसको थोड़ा सा उत्पादन
5: कम,
6: हाँ, थोड़ा सा उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसका तरीका यह है कि एक ही फसल ना उगाए किसान
5: जी,
6: बहु फसल ले, एक ऐसी टोकरी बनाए अपने खेत में जिससे उसको ये धान भी मिले, उसे सब्जी भी मिले, उसे फल भी मिले, उसे मोटा अनाज भी मिले। तो इससे क्या होगा, उसकी टोकरी में विभिन्नता होगी, भिन्नता होगी जो भी वो क्रॉप उगा रहा है, और मार्केट में भी उसको अच्छा प्राइस मिलेगा। हो सकता है कि मान लीजिए इसकी वजह से एक क्रॉप फेल हो जाए, तो दूसरी क्रॉप तो उसको उपज देगी
5: जी जी जी।
6: तो बहुफसलीय जो फसल चक्र है, और जैसे आजकल हमारा चलता है 12 अनाजा, 12 तरीके का अनाज उगाइए आप
5: जी,
6: है ना, इंटर क्रॉपिंग करिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग करिए, तो ये सारी पद्धतियां जो हैं कृषि की, ये अगर किसान भाई अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे उसको प्राकृतिक खेती से अधिक लाभ होने वाला है
5: जी। जैसे आपने बताया कि उत्पादन के अच्छे दाम किसानों को मिलेंगे, निश्चित तौर पे जो प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया अनाज है उसको लोग ढूंढते भी हैं, क्योंकि सेहत के लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा और किस तरह का फायदा किसानों को होगा प्राकृतिक खेती से?
6: देखिए, हम कहते हैं कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी अगर इसका स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमारा भी स्वास्थ्य ठीक होगा
5: जी।
6: मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, मिट्टी के अंदर इतने तरीके के जीवाणु होते हैं जो कहीं ना कहीं फसल को लाभ दे रहे हैं
5: जी,
6: और फसल को जब लाभ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें भी लाभ दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, आजकल हम बात करते हैं कि पानी, जल स्तर कम होता जा रहा है
5: जी।
6: प्राकृतिक खेती करने से क्या होता है कि एक तो हम जो हमारी मृदा है, जब हम खेत को तैयार करते हैं तो उसको कम से कम जुताई की जरूरत पड़ती है।
5: अच्छा,
6: ज्यादा जुताई अगर करेंगे तो उतना ही हम अपनी मृदा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरा एक होता है आच्छादन, आच्छादन को जैसे हम मल्चिंग भी कहते हैं
5: जी।
6: जो हमारे स्ट्रॉ है, जैसे गेहूं का हो गया, मक्के का हो गया, इसको अगर हम इसकी एक परत लगा देते हैं खेतों में तो इसके बड़े फायदे हैं। एक तो इसमें खरपतवार
5: जी,
6: जो सबसे बड़ा दुश्मन है मेन क्रॉप का, वो कम होते हैं। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं कि पानी जल स्तर कम हो रहा है, ये वाटर जो पानी की होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉयल की, मृदा की, इसको भी बढ़ाता है। जब इसको बढ़ाएगा तो उतना ही पानी ऊपर नहीं उड़ेगा
5: जी,
6: जल स्तर हमारा और बेहतर होता जाएगा। तो ये सब कुछ फायदे हैं जो मतलब लागत के अलावा भी हमारे जीवन को भी तो सुधारना है। अब देखिए, प्रकृति से अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, तो प्रकृति भी अपना रूप दिखाता है
5: जी। निश्चित तौर पे प्राकृतिक खेती के डॉक्टर साहब इतने सारे फायदे आपने बताए हैं, अब अगर हम कुछ नुकसानों की बात करें, क्योंकि किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो फायदे के साथ नुकसान भी हमें झेलने होते हैं, थोड़ा इसके अगर कुछ इस तरह के नुकसान जो किसानों के सामने आने वाले हैं उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
6: लेकिन इसको नुकसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं कि हो सकता है कि अगर किसान भाई एक फसली चक्र चला रहे हैं तो हो सकता है कि शुरुआती वर्षों में जो उत्पादन उनको मिलता पारंपरिक खेती से
5: जी,
6: उसमें 10 से 15% का नीचे लॉस हो सकता है। उसका विकल्प वही है कि वो बहुफसली उसमें जाए
5: जी।
6: दूसरा यह है कि जब ये हम प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं और मान लीजिए जीवामृत, बीजामृत ये सब बना रहे हैं, तो उसके लिए उतना ही हमारे पास पशुधन होना चाहिए। पशुधन अगर कम होगा तो ये बीजामृत और जीवामृत बनेगा कैसे
5: जी जी जी।
6: शहरों में आप देखिए आजकल जो हमारा जमीन कितनी कम हो रही है, कृषि की जमीन कितनी कम हो रही है, लोगों के पास पुराने लोगों के पास तो फिर भी अभी गाय हैं
5: जी,
6: लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है ये एक तो कृषि की तरफ इनका इंटरेस्ट कम हो रहा है और दूसरा लाभ बहुत जल्दी पाने की इच्छा भी
5: ये रखते हैं जी।
6: तो बात वहीं पे आ रही है कि सहनशीलता होनी चाहिए और इसमें देखिए लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि इसमें जो हमारे लेबर्स हैं उनका उपयोग ज्यादा होगा। तीसरा रिस्क जो क्रॉप रिस्क है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उसका भी विकल्प वही है कि ऐसी टोकरी बनाई जाए
5: जी,
6: ऐसी बास्केट बनाई जाए जिसमें हमारे पास कई तरीके की फसलें हों। अगर अब देख ले मान लीजिए हमारे पास किसी के पास बाग है
5: जी,
6: तो बाग है तो आम का बाग है मान लीजिए, तो आम का बाग में तो फल तो एक ही बार आएगा। उसी में अगर नीचे ऐसी फसलें लगाई जाए जिनको आम के पेड़ों से छांव भी मिले और उत्पादन भी मिले, जैसे हल्दी लगा दी
5: जी जी जी,
6: है ना, इस तरीके की चीजें लगाएं। पहाड़ों में एक और समस्या है कि जानवरों से जो है बहुत क्षति होती है।
5: बिल्कुल,
6: तो किसान भाइयों को ऐसे भी फसलों का चयन करना पड़ेगा जिसमें कि जानवरों से भी क्षति कम हो। सरकारें भी इस पे काम कर रही हैं, आजकल जानवरों से बचाने के लिए सरकार भी बहुत सारे चीजें ला रही हैं, लेकिन सरकार अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। इसके लिए किसान भाइयों को दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे। पहले छोटे स्तर पे शुरू करें, देखिए कोई भी चीज अचानक नहीं करनी चाहिए
5: जी।
6: सरकार ने भी जब ये शुरू किया था प्राकृतिक खेती का, तो पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया, छोटे छोटे स्तर पे शुरू किया, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट लगाए, उनका रिजल्ट देखा। जब उनका रिजल्ट अच्छा लगा तो क्षेत्रफल और बढ़ाया
5: जी।
6: ऐसे धीरे धीरे करते करते आज भारत में 4 से 5 स्टेट्स हैं हमारे जहाँ पे प्राकृतिक खेती बहुत अच्छे से हो रही
5: जी। तो डॉक्टर शरद पांडे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राकृतिक खेती के विषय में आपने हमारे तमाम किसान साथियों तक पहुंचाई, आप स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
6: धन्यवाद
4: किसान साथियों, अभी आपने सुनी ये भेंटवार्ता जिसका विषय था प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता। इस विषय पर डॉक्टर शरद पांडे से बातचीत कर रहे थे विकास चमोली। उम्मीद है आपने भेंटवार्ता को ध्यान से सुना होगा और दी गई जानकारी का लाभ भी आप जरूर लेंगे। साथियों, हर किसान की इच्छा होती है कि उसकी फसल अच्छी हो, उत्पादन अधिक मिले और खेती से बेहतर लाभ प्राप्त हो, लेकिन कई बार हम फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करने लगते हैं। इससे लाभ की बजाय नुकसान भी हो सकता है, इसलिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार फसलों को भी उचित विकास के लिए संतुलित पोषण की जरूरत होती है। फसलों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जिंक, सल्फर, बोरॉन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। अक्सर देखा जाता है कि किसान केवल यूरिया का अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होता है और फसल इससे जल्दी हरी भी दिखाई देने लगती है, लेकिन केवल नाइट्रोजन देने से फसल का संतुलित विकास नहीं हो पाता है साथियों। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है और उत्पादन की गुणवत्ता में भी कमी आ सकती है। संतुलित उर्वरक का प्रयोग का पहला कदम जो है वो है मिट्टी परीक्षण। मिट्टी की जांच से ये पता चल जाता है कि खेत में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। इसके आधार पर वैज्ञानिकों द्वारा उर्वरकों की सही मात्रा की आपको जो है सिफारिश भी मिल जाती है कि आप किस तरह से पोषक तत्वों का प्रयोग इस समय कर सकते हैं। और साथियों, उर्वरकों का प्रयोग हमेशा अनुशंसित मात्रा में ही करना चाहिए। जैविक खाद जैसे गोबर की सड़ी गड़ी जो खाद होती है, वो वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको जो है रासायनिक उर्वरकों से इससे हम बच सकते हैं और इससे मिट्टी की संरक्षण भी सुधरती है और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। उर्वरकों को एक साथ ना देकर आप आवश्यकता अनुसार अलग अलग चरणों में दें ताकि आपको अधिक लाभ मिले। विशेषकर नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को विभाजित मात्रा में देने से उनकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है और नुकसान कम होता है। संतुलित उर्वरकों का प्रयोग न केवल उत्पादन बढ़ाता है साथियों, बल्कि फसल की गुणवत्ता में भी सुधार देता है। साथ ही उत्पादन लागत कम होती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे आगे आने वाली जो फसल है उसको भी लाभ मिलता है। तो इस तरह से आप संतुलित उर्वरक का प्रयोग करके अपनी फसल से बहुत अधिक लाभ भी ले सकते हैं। चलिए अभी कार्यक्रम में हम सुनेंगे एक रोहेलखंडी लोकगीत।

अब इसी के साथ ही साथियों, समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का, पर आप हमें पत्र लिखकर जरूर बताइएगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। हमारा पिन है 2480001। और अब अपनी साथी सुरुचि वर्मा को अनुमति दीजिए फिर से आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखते रहिए। साथियों नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। समय हो चला है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों नक दगड़ में श्याम भट्ट। पहले मुख्य समाचार। राज्य में SIR अभियानक अंतर्गत गणना प्रपत्रों के बाणन और सत्यापनक काम तेजील चल्योक्ष। लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पुज्यान। देहरादून में रिस्पना नदी पुनरुद्धार और सफाई अभियानक अंतर्गत पिछले 3 महीने में नदी बठी लगभग 17,000 मीट्रिक टन कूड़ हटाई गो। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल पानी संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन में जन सहयोग पर जोर देश और हरिद्वार जिले में सरकारी की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का उद्देश्य 20 जून तक जन कल्याणकारी शिविरों का आयोजन करे जन लग रहा। अब समाचार विस्तार ले। उत्तराखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियानक अंतर्गत गणना प्रपत्रों के बाणन और सत्यापनक काम तेजील चल रहा। सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडेल बतास की SIR के अंतर्गत मतदाता सूची के ज्यादा सही बनोने के लिए घर घर जावेर गणना प्रपत्र बाणनक काम करी जन्नो। डॉक्टर जोगदंडेल बतास की आज तक राज्य के लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पुजाई जा रहे हैं। 6 जिलों में प्रपत्र बाणनक काम 99% तक पूरा गोच, वहीं और जिलों में ले अभियान तेजील चल रहा और अगले 1-2 दिनों में बाणनक काम पुर कर ली जालो।
2: अभी तक का जो प्रगति प्राप्त हुआ है 17 जून तक हमारे इस अभियान में 97% हमारे मतदाताओं को हम गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने में सफल हो पाए हैं। इसमें 6 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पर 99% से अधिक प्रगति प्राप्त किया गया है गणना प्रपत्र के वितरण कार्यक्रम में। इन जनपदों में रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत ये जनपद शामिल है। सबसे कम प्रगति वाले जनपदों में भी अच्छी प्रगति अभी तक दर्ज किया गया है। देहरादून जनपद में 94% है और उसके बाद नैनीताल जनपद में 95% प्रगति एनुमेरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूशन कार्य में किया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 1 से 2 दिवस के भीतर जो भी शेष गन्ना प्रपत्र वितरण का कार्य होगा वो भी पूरा कर लिया जाएगा। जितने भी गन्ना प्रपत्र सही विवरण के साथ भरकर हस्ताक्षर सहित प्राप्त हो जाएंगे उन सभी गन्ना प्रपत्रों का डिजिटेशन कार्य पूर्ण किया जाएगा, उसको BLO ऐप पर अपलोड किया जाएगा।
1: डॉक्टर जोगदंडेल कौश की मतदाताओं बठी मिल्यक प्रपत्रों का सत्यापन करवेर उनके निर्धारित पोर्टल में अपलोड करी जालो। जैल मतदाता सूची में कोई ले प्रकार की गलती या फिर असमानता के दूर करी जा सको। उन्होंने सब मतदाताओं थे बखत में अपन गणना प्रपत्र भरबेर संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों के उपलब्ध करने की अपील करी। ए बीच चमोली जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR अंतर्गत 3 मतदान केंद्रों में गणना प्रपत्रों का 100% वितरण और डिजिटाइजेशन काम केवल 8 दिनों में पूर कर ली जा रहा। जिला प्रशासन एक जन सहयोग और BLO मेहनतक परिणाम बतास। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार बतास की मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और बूथ लेवल अधिकारियों की मेहनतल यो उपलब्धि हासिल है। विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथक बूथ संख्या 133 झींझी और 138 पाणा और विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयागक बूथ संख्या 38 कोली में गणना प्रपत्रों के बाणन और डिजिटाइजेशन 100% पूर कर ली जा रहा। जिलाधिकारी संबंधित BLO और सहयोग करने वाले मतदाताओं के बधाई देते हुए कौश की विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सही और बिना गलतियों के मतदाता सूची तैयार करने का महत्वपूर्ण प्रयास छे। उन्होंने सब मतदाताओं थे सहयोग बनाई रखन और अन्य BLO के लिए अभियान में तेजी लोना निर्देश दिया। देहरादून में रिस्पना नदी पुनरुद्धार और सफाई अभियान के जिला प्रशासन और नगर निगम तेज करा ली। मानसून है पहली नदी का साफ और अविरल बनोनक लीजिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाई जन लग रहा। यही का देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान आज महापौर सौरभ थपलियाल और मुख्य नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे दगड़ राजीव नगर क्षेत्र में रिस्पना नदी में चल्यक सफाई कामों का निरीक्षण करी। उन्होंने मौके पर सफाई अभियानक प्रगति जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दियान। जिलाधिकारी कौश की मानसून है पहली रिस्पना नदी की व्यापक सफाई प्रशासनिक प्राथमिकता से जैल पैनिक निकासी व्यवस्था सुचारू बन रो और नदी संरक्षणक प्रयासों का मजबूती मिलो।
3: संबंध में हमारा एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान्स बनेंगे कि विजिबल चेंजेस कौन कौन से लाए जाने। मानसून से पहले के जो हमारी प्री मानसून तैयारियां हैं उसमें हमारे 12 से 15 जो ब्रिजेज हैं वो पीडब्ल्यूडी को हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें फंड्स दे दिए। सिमिलरली इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी फंड्स दिए गए हैं ताकि रिवर के चैनलाइजेशन के वर्क को करके मिटिगेशन किया जा सके। और अभी जो नगर निगम के एफर्ट्स हैं वो भी इसी लाइन पे हैं कि बिफोर मानसून हम बस्तियों को और अपने लो लाइंग एरियाज को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं और कैसे गार्बेज जो अंदर पड़ा हुआ है उसे निकाल के रिवर को क्लीन कर पाते हैं।
1: ध्यान देने वाले बात छे कि नगर निगम द्वारा रिस्पना के साफ बनुनक लीजिए मार्चक महन बैठे विशेष स्वच्छता अभियान चलाई जन्नो जैक अंतर्गत आई तक लगभग 17,000 मीट्रिक टन कूड़ हटाई जा रो। प्रशासन स्पष्ट करी कि नदी का कूड़ा घर न बनने दी जा और नदी में छूटने वाले अन उपचारित नावों को उपचारक दिशा में ले प्रभावी कार्रवाई करी जा।
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: पौड़ी गढ़वाल जिले के विकास खंड पाबो खुंडेश्वर मैदान में आज जिला स्तरीय जल उत्सव 2026 का शुभारंभ करेगो। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी सारा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल करी। यह अवसर पर डॉक्टर रावतल कौश की पानी संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका छ। उन्होंने कौश की राज्यक पारंपरिक जल स्रोत नदी गाढ़ गधर नौल और धार राज्यक अमूल्य प्राकृतिक संपदा छन जनों के संरक्षण बखतक मांग छ। उन्होंने कौश की बदलने जलवायु परिस्थितियों और बढ़ने जल आवश्यकताओं का देखते हुए जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवनक निजी राज्य सरकार अलग अलग योजनाओं में काम करने लग रहे। दगड़ स्थानीय समुदायों महिला समूह और युवाओं की सहभागिता ले इन प्रयासों के और ज्यादा प्रभावी बनाई जा सकछ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री लोगों थे साफ सफाई बनाई रखन और ज्यादा से ज्यादा डाउ बोट लगाबेर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिनक आह्वान करी। हरिद्वार जिले में केंद्र और राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों तक पूजनक उद्देश्य आज बैठे जन कल्याणकारी शिविर आयोजित करी जन्यान जन 20 जून तक चलाई जाल। इन शिविरों में अलग अलग विभागों की सेवा और योजनाओं की जानकारी एक जाग में मिल सके। जिलाधिकारी मयूर दीक्षितल संबंधित अधिकारियों के शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कौश की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन शिविरों को ठुल मात्रा में प्रचार प्रसार कर बेर ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करी जाए। शिविरों में अलग अलग विभागों द्वारा स्टॉल लगाई जाए जहाँ अलग अलग सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करी जाए उनके योजनाओं का

0: गुरजीत सिंह पवारल करें। यह अवसर पर स्कूली नंतिनोल योग प्रदर्शन ले करें और प्रतिभागियों योगक लीजिए जागरूकता और फिट इंडिया संदेश देज।
1: आलिया है, हम योगा दिवस के लिए यहाँ से दौड़े थे और यहाँ से हम तिकोनिया तक दौड़े थे और फिर हमें प्राइज भी मिले। हम ये संकेत दे रहे थे कि योगा फिटनेस हमें करना चाहिए, फिट रहना चाहिए अपनी बॉडी में।
2: आज हम यहाँ दौड़े योग दिवस पर, योगा हम सबको करना चाहिए। स्टेडियम की तरफ से तिकोनिया तक लेके गए, इसमें हमने रनिंग करी और योग सबको करना चाहिए। आपका बॉडी फिट रहती है, स्वस्थ रहती है।
0: ध्यान देने वाले बात छी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्यक अलग अलग जगह में कार्यक्रम आयोजित करी जनियान एक द्वारा लोगों के ज्यादा से ज्यादा संख्या में योग से जुड़ने की अपील करी जन लग रहे हैं। कर्णप्रयाग में भी श्रद्धालुओं के एक समूह और स्थानीय लोगों के बीच भई झड़पक बाद गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट गोविंद घाटक तरफ बैठे तीर्थयात्रियों से आपसी सद्भाव, अनुशासन और शांति बनाए रखने की अपील करी गई। ट्रस्ट के तरफ बैठे सब श्रद्धालुओं से यात्रा के महत्व और उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए श्रद्धा और मर्यादा दगड़ यात्रा करने के कही जा रहा, दगड़ या इस प्रकार कोयले काम करने है बचने का आह्वान करी जा रहा, जैल धार्मिक मर्यादाओं का ठेस पूजो। यात्रा के दौरान वाद विवाद है बचने और कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के सहयोग लिजिले कही जा रहा। अपील में सिख श्रद्धालुओं से योले कही जा रहा कि उन यात्रा के दौरान अनावश्यक रूप शस्त्र साथ में न लो। राज्य के अलग अलग जगहों में भव बैठे एक बार फिर मौसम का स्वभाव बदलने की संभावना छे। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार भव राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तेज आंधी और बरखा की संभावना छे। शुक्रवार के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरगढ़ में गरज और आंधी दगड़ डावले पड़ सकती। यही बीच राज्य के मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य है ज्यादा बनने को छे और अगले 2 दिनों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी है सकती। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों बणन और सत्यापन का काम तेजील चल्योग से लगभग 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पुज्जान। देहरादून में रिस्पना नदी पुनरुद्धार और सफाई अभियान के अंतर्गत पिछले 3 महीने में नदी बठी लगभग 17,000 मीट्रिक टन कूड़ हटाई गो। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल पानी संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन में जन सहयोग पर ध्यान जोर देश और हरिद्वार जिले में सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य 20 जून तक जन कल्याणकारी शिविरों का आयोजन करी जन लग रहा। एक दगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो अंक समाप्त भय। नमस्कार।
3: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म रॉकस्टार से मोहित चौहान के स्वर में इस गीत को। गीतकार है इरशद कामिल और संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

always.

0: फिल्म ताल से ही आपने सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक के स्वर में सुना इस गीत को। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतबद्ध किया एआर रहमान ने। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। समय है विशेष कार्यक्रम मोदी सरकार के 12 साल, जो प्रस्तुत किया जा रहा है क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून के द्वारा।
1: नमस्कार श्रोताओ, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून के विशेष कार्यक्रम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण मोदी सरकार के 12 वर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका मलिक। आज के इस विशेष अंक में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की यात्रा पर। वर्ष 2014 से शुरू हुई ये यात्रा आज विकास, जनकल्याण, आधारभूत संरचना, डिजिटल परिवर्तन, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, कृषि और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों तक पहुंची है। और इन्हीं उपलब्धियों में उत्तराखंड राज्य भी शामिल है, जहां डबल इंजन सरकार में अनेकों विकास कार्य और योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की अगर हम बात करें तो ये जनपद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद रहा है। पूर्व में ये टिहरी रियासत का केंद्र था, जहां राजशाही व्यवस्था संचालित होती थी। स्वतंत्रता के बाद टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ और धीरे धीरे ये जिला विकास की मुख्य धारा से जुड़ता गया। आज टिहरी बांध बनने के बाद जिले को नई पहचान मिली है। टिहरी झील ने पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खोले हैं। पर्यटन के क्षेत्र में टिहरी ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। विशेष रूप से वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के कारण टिहरी झील आज विश्व स्तर पर आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। केंद्र सरकार के द्वारा 12 वर्षों में टिहरी जनपद में कृषि, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और होमस्टे जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। होमस्टे योजना के माध्यम से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार मिला है और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिला है। जनपद में आयोजित G20 कार्यक्रमों और राष्ट्रीय खेल गतिविधियों ने भी टिहरी को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। इससे पर्यटन, आधारभूत संरचना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में हुए विकास कार्यों को भी प्रमुखता से रखा जा रहा है। खासतौर पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल हर घर जल योजना के तहत व्यापक कार्य किए गए हैं। श्रोताओ, मोदी सरकार के 12 वर्षों की इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर पानी देने का लक्ष्य है। वहीं टिहरी के मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने बताया कि जनपद की 6 विधानसभाओं में लगभग 2000 से अधिक पेयजल योजनाओं पर कार्य किया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष 1,28,000 से अधिक पेयजल संयोजन दिए जा चुके हैं, जबकि शेष कार्य प्रगति पर है।
2: जो शुरू हुआ था उसमें टिहरी जिले में हमारे जितने 9 विकास खंड 6 विधानसभाएं हैं उसमें लगभग 2,200 से ऊपर योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया था। उसमें कुछ योजनाओं को, पुरानी जो योजना थी उनको सही करना और नई पंपिंग स्कीम्स, इन सब का निर्माण किया गया था। इसके उपरांत लगभग 1,28,000 से थोड़ा ऊपर कनेक्शंस बांटे गए थे, जिसमें हमारे FSDC लगे गए थे। 1,29,000 का टारगेट था, 1,28,600 के करीब लग गए हैं जो अभी फंक्शनल है। कुछ अभी उसमें कार्रवाई चल रही है, जो स्कीम्स थोड़ी हमारी 17 स्कीम जो इनकम्प्लीट है उस पर कार्रवाई चल रही है। वो जब स्कीम्स कम्प्लीट हो जाएंगी तो हमारे टिहरी जिले में सारे कनेक्शन फंक्शनल हो जाएंगे।
1: जल जीवन मिशन के नोडल अधिकारी एवं चंबा जल निगम के अधिशासी अभियंता केएन सेमवाल के अनुसार जनपद में 9 विकास खंडों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 2,306 योजनाएं स्वीकृत हुई थी। इनमें से लगभग 99.7% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। योजना के तहत 1,29,000 घरों को जल संयोजन दिया जाना था। इनमें से लगभग सभी परिवारों तक पेयजल पहुंच चुका है और शेष निर्माणाधीन योजनाओं पर अंतिम चरण में कार्य चल रहा है।
3: जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के 9 विकास खंडों में लगभग 1,29,000 जो हमारे लक्षित घर थे उनमें सिर्फ लगभग 400 घरों को छोड़ के और से सारे घर जो है कवर कर लिए गए हैं। जो FSTC की प्रगति है लगभग 99.7% हो चुकी है। जल जीवन मिशन में 2,306 योजनाएं स्वीकृत हुई थी जिसमें 2,290 के आसपास योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अवशेष योजनाएं जो निर्माणाधीन है वो भी लगभग अंतिम चरण में है। इसमें लगभग कुल स्वीकृत धनराशि जो जनपद टिहरी गढ़वाल की सभी डिवीजनों के लिए थी लगभग 800 करोड़ के आसपास थी, जिसमें से लगभग 600 करोड़ के आसपास व्यय वर्तमान तक हो चुका है और अधिकांश गांव इसमें कवर कर लिए गए हैं। 1,743 टोटल गांव में से लगभग 1,250 के आसपास गांव हर घर जल सर्टिफाइड भी हो चुके हैं और जो उपभोक्ता हैं ये गांव जो हैं ये पूरी तरह से जल जीवन मिशन के कार्यों से संतुष्ट हैं।
1: जाखणीधार विकास खंड के पपोला गांव निवासी गोपीराम चमोली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में विकास के कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिनका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत उनके गांव में हर घर नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गोपीराम चमोली ने कहा कि पहले गांव के लोगों को पेयजल के लिए दूर दराज स्थित प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। महिला और बच्चों को पानी लाने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती थी जिससे समय और श्रम दोनों की अधिक खपत होती थी, लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत गांव के प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से पेयजल पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि घरों में नियमित रूप से पानी उपलब्ध होने से ग्रामीणों की दैनिक समस्याएं काफी हद तक समाप्त हुई है।
4: मोली निवासी ग्राम पिपोला हूं और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो ये जल जीवन मिशन की योजना चली है इससे प्रत्येक घर में आज पानी के नल हैं और प्रत्येक परिवार को इसकी सुविधा मिल रही है। इससे पूर्व में कई परिवारों को बहुत दूर दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता था। भाई कई लोगों को ये तो एक एक दो दो किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी और बड़ा उतराई और चढ़ाई का यहाँ पे रास्ते हैं क्योंकि ये पहाड़ी है और पहाड़ में सब सीढ़ी नुमा माहौल है तो बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस योजना को आने से प्रत्येक घर में आज सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं और सभी लोग बड़े प्रसन्न और खुश हैं।
1: श्रोताओं, जल जीवन मिशन योजना ने ग्रामीणों के कोसों दूर पैदल चलकर पानी लाने के भारी संघर्ष को समाप्त करके उनके जीवन स्तर को काफी ऊपर उठाया है। घर घर तक शुद्ध और नियमित नल का जल पहुंचने से न केवल स्वास्थ्य में सुधार हुआ है बल्कि सभी लोगों का समय और श्रम दोनों ही बचे हैं। वाकई मोदी सरकार के बीते 12 वर्षों की ये यात्रा केवल योजनाओं और उपलब्धियों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों नागरिकों के जीवन में बदलाव की भी कहानी है। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, डिजिटल परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, आधारभूत संरचना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण मोदी सरकार के 12 वर्ष को यहीं समाप्त करने की मुझे यानी प्रियंका मलिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे यह विशेष कार्यक्रम मोदी सरकार के 12 साल जो कि प्रस्तुत किया गया क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून के द्वारा। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं। समय हो चला है अंग्रेजी वार्ता का, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे मिसेज आशा रानी कपूर द्वारा ट्रेडिशनल विजडम इन मॉडर्न टाइम्स विषय पर वार्ता।
5: Namaskar everyone, my name is Professor Asha Kapoor and today I will be talking about some unique modern problems and what we can learn from ancient philosophies to deal with them. We live in an era of unprecedented acceleration in the name of development here in Dehradun, just as in Tokyo, Silicon Valley or London. We have the entirety of human knowledge sitting in our pockets. Yet, alongside this incredible connectivity, we face an epidemic of burnout, lack of attention, distraction, dissatisfaction, anxiety, depression, and so many lifestyle-related problems, including superficial relationships. In addition to this, the rates of mental illnesses are at an all-time high, despite the infrastructure in place to deal with them. Actually, in a sad state of affairs we are. Today, we often look at ancient philosophies, whether they are rooted in Vedic heritage, Greek Stoicism or indigenous traditions, and mistake them for relics of the past. We view them as dusty concepts confined to history books or temples, but what is a profound misunderstanding of the human experience? Traditional wisdom is not about looking backwards. It is about finding a grounded, unchanging center while navigating the storms of modern innovation. This is a fundamental problem with today's always-on culture. Look at how we operate today. We are required to multitask across 3 different screens. Our attention fragmented into fleeting, algorithm-driven dopamine hits. Children today learn instant gratification instead of long-lasting satisfaction with hard work. We were hyper-connected but fundamentally disconnected from ourselves. Traditional wisdom warns us about this exact peril. The ancient sages spoke extensively about the dangers of an uncontrolled mind that changes every shining object, or in modern terms, every notification. Our sacred book Bhagavad Gita, deeply embedded in the cultural fabric of India, describes the mind as a restless, turbulent force. Thousands of years before the internet, the text offered a timeless solution, practice and detachment. This does not mean giving up your smartphones or quitting your job. It means claiming your attention back. It is about actively choosing what you consume rather than get consumed. In modern psychological terms, this is what we now call mindfulness or digital detox. And these can be thought of as fragments of old wisdom adopted for the artificial environment of today. The greatest illusion that exists today is that of meaningless progress without purpose. Our modern society worships productivity. Humans perceive their own values with how productive they are in life. We work tirelessly, optimizing our diets, our sleep, our morning routines, just asking, how can I get more done? How can I do this? How can I finish the deadlines? Everybody is running in this frame of mind. But traditional wisdom asks a very different, more challenging question. Why are you doing it in the first place? Ancient philosophers argue that knowledge is merely data, but true wisdom is the ability to connect that data with moral purpose. We have built incredible tools like artificial intelligence, language models that give us instant access to large amount of data. Yet, as the legendary guitarist Jimi Hendrix famously noted, knowledge speaks, but wisdom listens. Well, when we rely solely on modern metrics of success, be it wealth, status, and likes and comments on your social media profiles, we often find ourselves sprinting on a treadmill that leads to a cliff edge. Traditional wisdom acts as a necessary anchor, reminding us that true success is not measured by the speed of our output, but by the quality of our character and the depth of our empathy. The biggest need of the hour is to redefine our meaning of success through an ancient lens. Let us re-examine some fundamental pillars of traditional wisdom and how they translate to our modern, fast-paced lives in the era of machines surrounding us. A. Embracing sustainability. Traditional cultures understood deeply that humanity is merely a thread in the vast interwoven fabric of nature. Modernity, with its focus on hyper-consumption and capitalism, has forgotten this. Today, the climate crisis forces us to relearn this lesson. Since we have been destroying nature rapidly for the past 300 years, we now have to frantically turn towards sustainable living, renewable energy and circular economies. In essence, we are desperately trying to re-adopt the reverence for nature that our ancestors practiced for millennia. True wisdom dictates that progress and profit cannot come at the expenses of planet that sustains us. Be the power of silence. In the modern world, we fear silence. We fill every commute, every waiting room, and every quiet moment with podcasts, YouTube videos, or reels. However, many Eastern and Western philosophies point out that it is only in the quiet spaces that we discover who we are. Silence allows us to process our lived experiences, quiet our anxieties, and cultivate self-awareness. It teaches us that our self-worth is not derived from external validation, but from inner peace. See, resilience in the face of disruption. Our world is categorized by volatility, uncertainty, and rapid technological shifts. Yet, philosophers like the Stoics in ancient Greece and Rome faced similar periods of immense political and social upheaval. Their teachings, focusing entirely on what you can control and letting go of what you cannot, are a masterclass in modern mental health. When a project fails or a global crisis hits, Stoicism offers the exact psychological resilience we need today. It teaches us to turn obstacles into opportunities and to find peace within chaos, merging wisdom with modern innovation. The goal is not to abandon our modern tech-driven world. Technology has provided us with extraordinary gifts. We can eradicate disease, communicate globally, and democratize education. But that is only if we stop the misuse of technology and start treating it like the tool it is meant to be. The true magic lies in the intersection of ancient wisdom and modern innovation. Imagine applying the ethical framework of traditional teachings to the development of technology in the future. Imagine if our economic systems were driven by the holistic, community-based, focused values of our ancestors rather than unchecked consumerism and demonic thirst for profit. The world would be a more equal, better place. We can harness the unparalleled speed of modern progress, provided we use the compass of traditional wisdom to ensure we are moving in the right direction. Having said this, the only way we can move forward is by taking action today. Ultimately, wisdom is useless unless it is applied to our daily lives mindfully. As we walk away from the speech, I challenge you to take one small piece of traditional wisdom and weave it into your modern life. Put your phone away 30 minutes before bed to protect your peace and sleep. Take 5 minutes in the morning to breathe deeply and ground yourself before

0: that phase, we have to get into the coasting phase. We are still in the little turbulent takeoff phase, but I suppose the industry will coast.
1: I'm sure
0: going
1: with kind of, you know, experience that all of you have and the companies that we have, the defense sector will certainly do well. So that was Arun Ramchandani of L&T giving us a fascinating overview of the Indian defense sector. Policy which have been enabled by the government, policies that have been promulgated by the government, has enabled both private and the public sector to flourish or at least grow in the last decade or so. And that is something very encouraging, and the future looks very bright as far as defense sector is concerned.
2: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you were listening to an interview with Arun T. Ramchandani, Defense Head, L&T. Interviewer was Nitin Gokhale, Senior Journalist. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 साल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर रात्रि के 8:45 समय समाचारों का।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
5: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं।
4: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक

0: आपत्तियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों एनआरआई पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में एनआरआई विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सुबोध मिश्र।
6: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa, and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence, and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France, on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
8: Excellency, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी एक्सेलेंसी मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं
7: Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 Summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting brought together G7 member countries, partner nations and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. On the margins of the G7 summit in Evian, Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz today exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction at the renewed momentum in the India-Germany strategic partnership with the successful visit of Mr. Merz to India and the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Mr. Merz invited the Prime Minister for the 8th India-Germany Intergovernmental Consultations, IGC, scheduled to be held later this year in Germany. Prime Minister Modi also held a meeting with President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and President of the European Council, Antonio Costa, on the sidelines of the summit. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
9: The two-day visit of Prime Minister Narendra Modi to the beautiful French city of Evian has been highly significant. During the visit, the Prime Minister participated in various G7 outreach sessions where India was invited as a partner country. This marked Prime Minister's 7th consecutive participation in the G7 summit. India's regular presence clearly demonstrates that the nation has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. During the outreach sessions, Mr. Modi strongly presented the voice of the Global South before the crucial forum. In yesterday's session, he underscored the importance of trust in building international partnerships in an increasingly interconnected world, highlighting that India has always followed a humanity-first approach. In today's session, the Prime Minister underlined the critical need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developed countries. Mr. Modi also emphasized that tangible growth leads to the true inclusion and well-being of people, showcasing India's own growth story underpinned by the guiding principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Biswas and Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwani News, AVO France.
7: India and France have reaffirmed their commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at the inauguration of the India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Speaking at the event, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and French Minister for Artificial Intelligence and Digital Affairs Anne Le Hennef highlighted the growing strategic partnership between the two countries. More from our correspondent.
10: Addressing innovators and startups, Piyush Goyal said the India-France partnership has been strengthened further through the India-France Year of Innovation 2026 announced by Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron. He said India offers key advantages for the AI era, including a young population, a large pool of STEM graduates, strong digital infrastructure and democratic governance. The minister underlined India's vision of human-centric artificial intelligence through the concept of Manav, emphasizing ethical, accountable, inclusive and trustworthy AI. He said India is prepared to become a global hub for AI talent, data centers, and advanced technology. French Minister Anne Le Hennef described India as a global innovation powerhouse and welcomed its role as the AI country partner at Viva Tech 2026. This is Mahesh Sopade, Akashwani News, Paris, France.
7: The India Pavilion is one of the largest national pavilions at Viva Tech 2026 and showcases the country's growing startup and innovation ecosystem. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Indian Railways has approved a series of infrastructure projects worth over 1,200 crore rupees aimed at enhancing rail capacity, improving freight movement, strengthening safety systems and upgrading urban transport infrastructure across Gujarat, Maharashtra, West Bengal and Madhya Pradesh. The projects include the doubling of a key railway section in Gujarat, construction of a new freight cord line in Maharashtra, modernization of signalling systems on Eastern Railway, and rebuilding of a major road overbridge in Indore. Together, the initiatives are expected to improve operational efficiency, decongest critical rail corridors, enhance passenger convenience, and support economic growth. In a boost to rail connectivity in the Kutch region, the doubling of the 49-kilometre Adipur-Bhuj section on Western Railway has been approved at an estimated cost of 493 crore rupees. Indian Railways has also approved the construction of the 3.7-kilometre Somtene-Chikli cord line on Central Railway at a cost of 172 crore rupees in Maharashtra. The new line will establish a direct rail connection between the Karjat and Roha routes, allowing freight trains to bypass the heavily congested Panvel junction. In a major modernization initiative, the Indian Railways has sanctioned a 405 crore rupees signalling upgradation project on Eastern Railway. To improve urban mobility and railroad connectivity in Madhya Pradesh, Railways has approved the reconstruction of the Shastriya Road overbridge in Indore Yard at a cost of 139 crore rupees. Union Minister Ashwini Vaishnaw today announced a major expansion of Pune Railway Station with an investment of around 600 crore rupees. The minister was speaking after flagging off the Pune Sai Nagar Shirdi Express at Pune Railway Station and inaugurating and laying the foundation stones for various railway development projects. In another function, inaugurating the new manufacturing facility of US-based company Jabil at Ranjangaon MIDC in Pune, Union Electronics and Information Technology Minister Vaishnav said, India has emerged as a major electronics manufacturing hub and is now the world's sixth largest exporter of electronics.
11: Today we have electronics manufacturing industry worth 13 lakh crore rupees in our country. Electronics export was considered unthinkable. Last year, 2025, electronics as an export category became third largest export category in the country. But now we must take the target. Second largest exported category banna hai.
7: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government has carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, the farmers, the women and the youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government towards preservation and promotion of the country's heritage.
2: Over the past 12 years, India has undertaken several landmark initiatives to preserve, promote and celebrate its civilizational legacy. One of the most significant moments came in January 2024 when Prime Minister Narendra Modi performed the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Grand Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the fulfillment of a centuries-old aspiration. Talking to Akashwani News, Pankaj Jaria, a devotee, shared his experience.
12: A few days ago, I went to Ayodhya where we had the darshan of Prabhu Shri Ram. The arrangements are very good. The government has made excellent arrangements to manage the crowd. Everyone stands in line to have the darshan. There are locker facilities for people to keep their belongings. There is also a facility for drinking water. Very good arrangements have been made and there are also beautiful table walks and displays which look very divine.
2: In Ujjain, Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project was dedicated to the nation in October 2022. The Grand Corridor showcases magnificent sculptures, murals and architectural elements depicting the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the temple with River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. Talking to Akashwani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the corridor is providing ease of access to pilgrims.
13: Kashi mein Modi ji ne bahut kaam kiya hai.
14: Prime Minister Narendra Modi has done a lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
2: Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
7: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. The IMD said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Telangana, Odisha, Jharkhand, Bihar and some parts of Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. In cricket, chasing a target of 403 runs set by India, Afghanistan were 225 for 8 in 42 overs in the second ODI of the three-match series in Lucknow when reports last came in. India were bowled out 402 in 49.5 overs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at VivaTech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chased target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. That is all in the news at 9. Good night.
15: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on major takeaways from G7 Summit and Prime Minister's meetings with world leaders. The participants are Professor Rahul Mishra, International Affairs Expert, and Deeksha Saxena, Akashvani Correspondent.
16: Obviously, Bain hosted the 52nd G7 Leaders Summit. Prime Minister Narendra Modi participated in the summit as India is a partner country in the G7. He also addressed the sessions on forging new partnerships and rebuilding international solidarity and the second session on reviving a balanced, shared and sustainable economic growth for all. He also held multiple bilateral meetings on the sidelines of the summit. To talk more about this, we are now delighted to be joined by Professor Rahul Mishra, International Affairs Expert. Professor Mishra, welcome to Akashvani News.
17: Thank you.
16: Professor Mishra, I just mentioned that Prime Minister Modi had a number of bilateral meetings on the sidelines of the summit. One of the most important bilateral meeting was between Prime Minister Narendra Modi and President of United States of America, President Donald Trump. So while delivering his statement during his meeting with President Trump, Prime Minister categorically emphasized that it is important to maintain the freedom of navigation. And he also said that it is important to ensure the security of seafarers. So before we proceed any further, let's first listen to what Prime Minister had to say.
18: Excellency, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ. आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी. एक्सलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है. एक्सलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए. एक्सलेंसी, आप जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है. एक्सलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है. मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी.
16: Professor Mishra, I would like to have your comment on what Prime Minister just said. He said that it is important to maintain the security of seafarers. How do you see that?
17: There are two things here. One, of course, Prime Minister Modi has had very productive meetings, very important meetings with Canada, with European Union, with the German Chancellor. But this indeed, a meeting was something that media and international community was really talking a lot about and they were speculating a lot about it, keeping in mind the rough patches that emerged over past few months between India and the US. So very important meeting indeed. And I thought Prime Minister Modi's statement, very candid and said, conveyed in a very confident manner, which is something that we do not see in a number of leaders when they interact with the US. So conveying India's interests and concerns in a very open, candid and confident manner is something that must be appreciated. And this also sent a very good signal, not just to the US, not just to the President Trump, but also to the international community, that when it comes to securing and protecting India's national interest, the country or its leader will not shy away from conveying it openly and vocally at the international forums, in public forums.
16: Prime Minister welcomed the deal between Iran and USA, the peace deal, because India has always advocated for peace and diplomacy over violence. So he also mentioned that it is vital for the global trade and global community that the Strait of Hormuz remains open. How do you see that?
17: Well, India has been a very vocal supporter of bringing peace urgently and immediately in the Middle East, which involved US and Israel on one side and Iran on the other. India has been very supportive of any initiative taken to bring peace to the region. And I think the statement that Prime Minister Modi gave is in sync with that. The whole world has realized how the energy crisis and closure of the Strait of Hormuz affected not just countries across the world, but also the people. The human civilization was affected. Energy crisis and countries facing economic challenges, both in terms of industry and also in terms of inflation. So I think highlighting these two points, that Strait of Hormuz should be open, conveys India's economic interests and concerns, and also appreciating the peace agreement between the US and Iran underscores that India has been a votary of a peaceful resolution to conflicts, whether in US, whether in the Middle East between US and Iran, or between Russia and Ukraine. So I think there is consistency in what India has been conveying to the international community.
16: Professor Mishra, Prime Minister categorically emphasized on trust in the global order and world politics while speaking yesterday. The Prime Minister said, "Today the world does not suffer from a shortage of resources, it suffers from a shortage of trust. And the future of our partnerships depending on building this trust." How important, in your opinion, is this statement?
17: Look, this statement clearly is in light of the recent developments that have taken place both at the international level amongst major powers and those countries that are in dispute or conflict with each other, but also in case of India's own relations with the other countries, and particularly with the US. What Prime Minister meant was that when countries and its leaders go for agreements and agree to cooperate with each other, there has to be a consistency, and those promises that are made must be kept. This is something that has been missing of late in India-US ties. So I think mentioning trust at the G7, what he meant was that at the international level, whatever agreements or whatever negotiations that happened between the US and Iran, for instance, were not respected, were not followed through. He also indirectly, I believe, referred to the killing of three Indian seafarers off the coast of Oman. And there, in that context, by trust, what he meant was that friends, if two countries, India and the US, consider each other friends, then because of the trust that they have with each other, you know, these casualties should not have happened. This is a very good and very important normative message that Prime Minister Modi has tried to convey to the international community, highlighting the importance of this foundational pillar in international relations and diplomacy.
16: Moving ahead, Professor Mishra, while addressing the second session today at the G7 summit, reviving a balanced, shared and sustainable economic growth for all, Prime Minister proposed establishing an international mobilization partnership for accelerating connectivity and trade, which is also known as IMPACT. Can you talk more about it?
17: IMPACT initiative is basically driven by three ideas. One, that countries that are directly involved are major stakeholders that are involved. Countries that are directly involved in maritime trade and transport must come together to safeguard these the international waters, trade routes, also trade mechanisms. And this should be a coalition of willing, where countries that are interested, that are direct parties in sharing these concerns and interests, should come together and create an alternative informal channel to keep the international corridors, international trade routes, maritime routes safe and secure. But this is also driven by this idea that, considering the crumbling rules-based international order, coalition of the willing is certainly something that must be thought about, that must be discussed. And India's taking up a very good responsibility there in terms of inviting other countries to participate and also showing its willingness to contribute to such a mechanism.
16: The G7 leaders also adopted a series of declarations and which focused on global stability, security, cooperation and efforts to counter transnational organized crimes. The major takeaway is the statement of the leaders

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हों, युद्धपोत हों या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी हैं। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बैनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय हिंद।
1: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कल पुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
3: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। डिफेंस कॉरिडोर का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना, तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिससे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने की बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। इस प्रकार अपने बनाए हुए रडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना। ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इसे बनाया है, तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ ऑल टाइम हाई, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो आपको 15.6%, तो उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा, और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 43,000 crore, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 crore है, प्राइवेट प्रोडक्शन। यू कैन वेल इमेजिन 1,78,000 crore में प्राइवेट का contribution है, that's almost about the same as what was the total defense production of 2014.
1: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं। आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं। एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इस 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास हैं, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे मुल्क है जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनियों को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, इंपोर्टर अभी हम रहेंगे 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे हम इंपोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े स्टेम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
3: देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्री ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के DRDO ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, वो फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसके बाद फैक्ट्री बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है, 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट फॉर मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो।

0: मैन्युफैक्चरर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो, तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने मार्क वन बनाया है, आपने हमने बनाया हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस सप्लाई स्पेयर उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमियां है, IITs है, वहां के बच्चे बड़े होशियार है, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स हैं वो आगे आते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम बिहार, जैसे आप कह रहे हैं, वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कई एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स नॉट सो इजी। ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टिल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा दो साल हो गए, दो इंजन नहीं आ पाए, दो साल हो गए। क्यों? हमने उनके भरोसा, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे। इसलिए अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर MCA प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब चार गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने हैं। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इंपोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल, आर्टिलरी गन इंपोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है INS विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंत, उसके 3 आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इंपोर्ट नहीं होगा। तो वो जब पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है, तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी UAV बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इंपोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि 5वीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में 3 कंपनियों को, 3 कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा है कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से एक बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे थे, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इम्पोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की 2 श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था 8-10 साल हमें ये पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी, आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल

0: बहुत जरूरी है। इनोवेशन, डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
1: देखिए, ड्रोन वॉप में अब समथिंग हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडाप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है। हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पे पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को टुनके लिए दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है। हम धीरे धीरे करके, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल। और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इंपोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इस तारीख में अगर हम देखें, स्टार्टअप देखें जरूर, चाहे स्टार्टअप्स के पास आपके पास या नेविगेशनल लॉजिस्टिक हो या उसके सीकर्स हो या उसके पास फोटोग्राफिक देते, बहुत कुछ साधन हैं जो स्टार्टअप्स के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप्स को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा, ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम, ये हमारे लिए है, इसमें आत्मनिर्भरता तो भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GFQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे है, और वो उस मापे का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है, +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में, तरह तरह के टेरेन कंडीशंस है। तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं, इसलिए रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए, UAVs को मद्देनजर रखते हुए, न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे स्पेस है, नेविगेशनल है, जियोस्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के साथ मिल करके अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है ये हम भारत के अंदर बनाए। और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, या अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
0: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है?
2: इसके कई सारे आंसर। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी। फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी, और सबसे बड़ी बात अभी तो निजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे। जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा। मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी जब आप ग्रो करेंगे तो। जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज टास्क, तो आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए और वो ट्रेंड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI है वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेंड मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है, कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी। जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है। और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा वो, जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको। MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहां बनाया, साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पे इंपैक्ट करता है सबको, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी इंपैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
0: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
1: अपने को मालूम है कि हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं, और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है। अगर नंबर 1 GDP वाला अगर $22 trillion का है, नंबर 2 तकरीबन 17-18 trillion का है, तो नंबर 3-4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 trillion की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है ये हमारा देश है और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए, लड़ाई अगर होगी तो दूसरे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के चक्कर में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है बिंदा गई, उनको नुकसान होगा, ये वो बात है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। आज देखिएगा कौन सा है वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, फटाफट कौन से जनरेशन है 1, 2, 3, 4, 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इम्पोर्ट किया 4.5 जनरेशन, 5th, 6th जनरेशन स्टिल। तो आप देखते हैं किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब आप भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं। हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया है, इसको किस तरह, तो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर्स इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट है, चाहे अपने UAVs है, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे अपने लाइट टैंक्स है, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस है, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स है, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स हैं, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए हाँ ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, विश्व में जाकर के सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा सैनिक US के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है। जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब वेन यू ट्रेन वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपका आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मुकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मुकाम जाएगा।
0: बैनर्जी जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इससे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
2: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवर्ड द शिप, जमीन से सामने के युद्ध पोते मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मेनिया को आम कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिस से तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाई अप है, यूएसएसआर यानी अब सोवियत रशिया के साथ और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाई अप है, विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन की, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरन नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए को 20 साल से, इंजन यही इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई उसकी, कुछ इंपोर्ट होता है कुछ यहाँ बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, 1,78,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है, और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए, 30 साल लग गए जी 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहां कि आपने ये बनाना है, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कोई सिखाएगा नहीं, कोई, देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो, तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे 20 साल लगे, लगते हैं इतने जी बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे अब जी बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक तो दूसरा R&D वेरी स्ट्रांग R&D अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हैं, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रांग, ये वे फॉरवर्ड है।
0: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
1: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आगे दर्जे का बनाना है, अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बनाया है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर, अगले 5 साल के अंदर एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, और अपने जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूँ ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
0: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये यात्रा आसान नहीं थी लेकिन ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू।
1: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से

0: सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। समय हो गया है हमारे श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का।

नमस्कार लिसनर्स, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आज आपकी होस्ट और दोस्त श्वेता शर्मा, लेकर आई हूँ आप सभी के पसंद के चुनिंदा गीत। श्रोताओं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी तो फरमाइशें आनी शुरू हो चुकी हैं, परंतु जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दें, आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम तक अपनी फरमाइशी पसंद का गीत भेज सकते हैं 7088-0003-1 पर, 7088-0003-1 पर। और आप चाहें तो अपने साथ अपने दोस्तों के नाम, आपके घर परिवार में जो भी आपके रिश्तेदार आपके साथ उस गीत को सुनना चाहते हैं उनके नाम हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं इस गीत से, जिसकी की फरमाइश करने वाले हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं, संदीप मक्कर, मनोहर लाल गांधी, धर्मवीर जी डेलीवाले, कमल साहनी, जोगिंदर पाल मक्कर, संजय हद्राबड़ी, पिंगावाला चौक, गुरैया, जलंधर से। इनके साथ ही जुड़ने वाले श्रोता जो कि जुड़ते हैं हमारे साथ, वे हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर, और इनके साथ ही सुनने वाले हमारे श्रोता एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरफ खुराना, एसके पप्पी, और साथ ही जो जुड़ रहे हैं राजकुमार डूडी फ्रांसी गांव हिसार से, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। इनके साथ ही साथ जुड़ने वाले श्रोता गंज डंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी, एवं रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से सुनीता शिंदे, प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घुड़के, आप सभी सुनना चाहते हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर के स्वर में फिल्म दीवाना के इस गीत को।

ये गीत था फिल्म दीवाना से अलका याग्निक और विनोद राठौर के स्वर में। अगले गीत के फरमाइश करता है हमारे साथ जुड़ रहे जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, और इनके साथ ही मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, और इनके साथ ही सुनने वाले हमारे श्रोता जुड़ते हैं बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, रचिता मस्कीन, आशीष राजा, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, रिधान खुराना। साथ ही गांव झगुड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मन की रत, मनराज, और साथ ही शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी। इनके साथ ही फरमाइश करता है देहरादून से आरती रतूरी, अमित बधानी और उनकी प्यारी बिटिया आदित्रा और बधानी और आदित्री बधानी, और उनके साथ ही राखी डे उनकी बड़ी दीदी एवं उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जमाने को दिखाना है से शैलेंद्र सिंह के स्वर में इस गीत को।

अगले गीत की फरमाइश करता है स्योहारा ज़िला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी, और इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता जो जुड़ते हैं हमारे साथ वो हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, और इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल, एवं साथ ही सुनने वाले श्रोता जुड़ रहे हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आराध्या, और साथ ही शेरवानी स्कूल गंजडंडवारा उत्तर प्रदेश से अफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, रामपुर से सुनील सक्सेना, वेदांश सक्सेना, सारांश सक्सेना, एवं करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोहेब खान, सिंधोली बरेली से जीशान वारसी, इनके साथ ही सुनने वाले हमारे श्रोता जो जुड़ते हैं हमारे साथ अस्तपुरा ज़िला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, और इनके साथ ही सुनने वाले हमारे श्रोता जुड़ते हैं ग्राम पंजौनिया ज़िला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया, आप सभी सुनना चाहते हैं आशा भोसले और कुमार सानू के स्वर में फिल्म सलामी के इस गीत को।

सुनने वाले हमारे श्रोता अगले गीत की फरमाइश करते हुए परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान, इनके साथ ही साथ जुड़ने वाले हमारे श्रोता माल्यान सरदना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम जैन और साथ ही रमेश चंद्र चौहान सेक्टर 5 गुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से। इनके साथ ही जुड़ते हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी कुलदीप कंवल। इनके साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं कस्बा उदयती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता और साथ ही जुड़ने वाले श्रोता लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध बलबीर रोड देहरादून से और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज़ शेख, दानिश शेख, अमन आ

अफरीदी राधा नामदेव। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुनना चाहते हैं फिल्म राज से अलका याग्निक के स्वर में इस गीत को।

अगले गीत की फरमाइश करता है राजेश्वरी सागर, अधिकारी निवास, मिलन विहार, GMS रोड, देहरादून से। और इनके साथ ही जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम, साथ में ही मोहम्मद आलम हाशमी। और इनके साथ ही गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम, सद्दाम अदीब। और साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं जो कि जुड़ते हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। इनके साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता पटियाली रोड गंज डंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम ताइबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्य। साथ ही राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और रामेकर परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं उदित नारायण के स्वर में फिल्म कयामत से कयामत तक के इस गीत को।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

अगले गीत की ये फरमाइश करता है अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और उनके साथी। पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार झाजोरिया, गीता रानी झाजोरिया, गगनदीप झाजोरिया, आरजू झाजोरिया और गुड्डू, और इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता जो जुड़ते हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बापू और इनके साथ ही साथ मोहल्ला बारादरी महमूद खां, रामपुर से भाई रफत साहब, सैयद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोज़ा मुस्कान और अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी। इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता जो कि जुड़ते हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से लता मंगेशकर के स्वर में इस गीत को।

अगले गीत की फरमाइश करता है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से, बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शुगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश, पृथव सिंह। आप सभी सुनना चाह रहे हैं फिल्म फर्ज से मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में इस गीत को, और आपके साथ ही साथ राजनगर, कांति निकेतन, कुशेश्वर, कांति गुप्ता, रुद्र गुप्ता, शारदा गुप्ता, पीली कॉलोनी ऐशबाग से रानी मुकेश गुप्ता, संजना रानी, रश्मि गुप्ता, नीलम गुप्ता, रूपा इलाहाबादी, और इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता जलालाबाद, शामली, उत्तर प्रदेश से राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी, जिशान मंसूरी, और लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा। इनके साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता फजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा। आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं इस गीत को।

खाला पार मुजफ्फरनगर से साहिना प्रवीण, फातिमा, खुशबू, आयजा, मोहम्मद अदीब, मजरूर अली और इनके साथ ही सुनने वाले हमारे श्रोता जो कि जुड़ते हैं हमारे साथ, वो हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। इनके साथ ही सुनने वाले श्रोता हैं

नकपुरी, सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पर्ल डी कैस्ट्रो, विलिस डी कैस्ट्रो, और जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासिन अंसारी, सुदेश चौहान, और इनके साथ ही साथ सुनने वाले श्रोता विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छापरा, इंद्रजीत कौर छापरा, स्वीटी छापरा, और साथ ही साथ सुनने वाले हमारे श्रोता सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान, अब सभी सुनना चाहते हैं सन ऑफ इंडिया से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में इस गीत को।

अगले गीत की फरमाइश करता है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, और इनके साथ ही साथ जो हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो हैं करणवीर हाउस भुज्जू कैंचिया बठिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिंगू एकम, दमन अभिजोत, और इनके साथ ही साथ जुड़ने वाले श्रोता खैरा अफगान सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, अनमोल सैनी, कनिका सैनी, पूजा सैनी, भीम सैनी, राधिका सैनी, आयुषी सैनी, विपिन सैनी, और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, और गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊ नाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, और येलांदू कोठगोदम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना, अम्मी प्यारा बिल्लू, और इनके साथ ही साथ बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फौजिया रोशनी, शयाना काजल और भाई शहजाद अली। आप सभी सुनना चाह रहे हैं फिल्म मर्यादा से मुकेश के स्वर में इस गीत को।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब समय हो चला है समाचारों का।
1: नमस्कार आकाश।

0: जापानी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।